ज्यों जोरू सिर नहावनी आवे वारो वार। मन का सुतक लोभ है जिहवा सुतक को रखी सुतक वेखना परत्रिया परतन रूप कन्नी सूतक कन पहलाए तवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाए।

ਇਹ ਪਾਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਕੋਨ ਕੇ ਜੀ।

0: लेखा संडी है जा रहना नहीं है तो जगता कायत गार भंडी है मंदा किसना के पर अखरे हो बुझी है मूर्ख है ना न रुझी है मूर्ख है ना न रुझी है
1: गुरसिख मन बदाइया जिन मेरा

जान मिठा हर दर्द दुख बनाइए जिन में सतगुर तुटा जान नानक हर

ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦੀ ਆਪਣਾ।

नानक अंतरा जपनी हर ता के परावार आप करे साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन

0: श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सदा प्रसारण सेवन कर रहे थे। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस फ्री की पंजाबी सेवा चुन असि थोड़ी नजर कर रहे हैं सूफियाना कलाम।
1: समाज फरमाओ सूफियाना रंग, समाज फरमाओ सूफियाना रंग।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोवाट से तय खास समय तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस मोरस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझी सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स कुछ नत रहे थोड़ी देर में तमा हमेशा भगत कराम साहब जन जे सदाबार आवास में कलाम बुधना अज लोली पेश कंदी तखा पोए तफसरो ए पोए तमा अज अदबी गुलशन प्रोग्राम तहत सब खावल जनाब नारायण श्याम खान शेर शारी जैसे बुधन तें खा पोए जनाब एम कमल खान का नंढी कहानी बुधंदा खास खास खबर प्रोग्राम जी आखिर नशर कर वेंदी या तो इसमें प्रोग्राम जी डिटेल्स तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा या जो तो भगत कोराम साहब जन जी सदाबार आवास में लोली बुधूं

नायब कारम साहब जन जे मिठड़े आवाज में लोली बुध रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। मरकज़ी गृह वज़ीर ऐं कोऑपरेशन वज़ीर श्री अमित शाह FCRA 2 पोर्टल ऐं EOCI कार्ड खे नई दिल्ली में मंगल ॾियारे शुरू कयो। इन मौके ते श्री शाह चयो त ॿई नई कार्रवाइयूं अॼु शुरू पई कयूं आहिनि, जंहिंजो मक़सद आहे शहरनि खे वधि में वधि फ़ाइदो मुयसरु कराइणु। उन्हीं कार्रवाई से अज का वी कर शहर बेहतर सहूलियत इंदियं, खास तौर पर जो पाड़े में रहंदड़ डोनेशन्स चंदा वन तेसा वापस FCR पोर्टल में काफी तब्दीली अची। FCRA 2 पोर्टल के तमाम सहलो किया है, सो पाड़े चंदो रेगुलेशन एक्ट तहत इनमें जांच पड़ताल के सिस्टम के पुख्तो किया है। एप्लीकेशन्स रिन्यूअल्स सालाना रिटर्न्स ए बन सेवाओं से व्यवस्था सारी कार्रवाई के पूरी तरह से डिजिटल किया है। इन वक्त 14,500 एक्टिव FCR इदारा जो मुल्क भर में कम कर रहे हैं। हर साल लगभग 15,000 का 20,000 एप्लीकेशन ए सालानो 17,000 रिटर्न्स मिलना इतने वे मकदार के डिसंदे एक जदीद टेक्नोलॉजी आधारित ए सलामत सुरक्षा की सिक्योरिटी की जरूरत हुई। पोर्टल के नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड यानी कि मेघराज ते रखे वो है, तेमें घणाई फीचर्स हैं जड़ो कि इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड आधार ते आधारित ऑथेंटिफिकेशन ई साइन सहूलियत OCR ते आधारित कागजन की जांच पड़ताल। FCR अमेंडमेंट रूल्स 2026 में इनमें शुमार किया है। पोर्टल के सभी सरकारी डाटाबेंस ए बैंक से जुड़े हुए तैमें अची थे पैन आधार OCI NGO दर्पण ए ICAI जो UDIN सरिश्तो इन यो पोर्टल कागजी कार्रवाई के घट कद संदन वक्त बचंद ए खेन सवलो ए राहत डींदड़ आजमूदो थन्द इन सा एप्लीकेशन जल्द कार्रवाई में अची वन लॉगिन से डैशबोर्ड मिल सरकार API ते आधारित मुख्य डाटाबेस के इन से रखे तो जी तुस वेरिफिकेशन जो कम थी मत बेहतर नमूने जांच पड़ताल थी सकंदी। इन के अलावा रिसिप्ट ए पढ़े चंदन के कतब के पिठो वो इन्हीं से कौमी सुरक्षा ए सही हुकुमरानी पिण पुख्ती थन्दी।

प्लेटफॉर्म में एआई ते आधारित चैटबॉट ऐं मोबाइल ते आधारित लिंक पिण मुयसर करायो वियो आहे। ओसीए कार्ड खे शुरू कंदे घरु वज़ीर जाचियो त ओसीए सिरिश्ते में जेके शुरू में तकलीफ़ूं अची रहियूं तिन खे नए सिरिश्ते सां दूर कयो वियो आहे ऐं 50 लख ओसीए कार्ड होल्डर्स खे फ़ाइदो रसंदो। 20 साल खां पोइ जीअं नओं पासपोर्ट ॾिनो वेंदो आहे तीअं हाणे नए ओसीआई बुकलेट जी ज़रूरत न रहंदी ऐं कार्ड होल्डर जी रजिस्ट्रेशन तमामु अलहदा थींदी। इन सभ खां अलावा डिजिटल ओसीआई कार्ड जंहिंमें गुम थियण जो या ख़राब थियण जो भउ हूंदो सो हाणे ख़तम थी आहे डिजिटल हुअण सबबि। इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया ई ओसीआई कार्ड पिण शहरनि ते आधारित ओसीआई सर्विस आहे जेका आलम में रहंदड़ भारतीयनि जे लाइ हिकु ख़ासि फुली डिजिटल कार्रवाई आंदी वई आहे। इन सिरिश्ते तहत दाख़िला कंदड़ पंहिंजो ओसीआई प्रोसेस ऑनलाइन ॾिसी सघंदा आहिनि। एप्लीकेशन जमा करण खां वठी करे तव्हांजो डिजिटली तयार थियल कार्ड खे डाउनलोड करे सघंदा आहिनि। एप्लीकेंट्स लाइ इहो सिरिश्तो तमामु सवलो ऐं पूरी तरह सां हिकिड़ो डिजिटल आज़मूदो आहे जंहिंसां माण्हू जी फिज़िकल प्रेजेंस उते शख़्सी हाज़िरी जी ज़रूरत कोन थी पवे ऐं किथे बि पंहिंजे मोबाइल डिवाइस सां पंहिंजे एप्लीकेशन जी कार्रवाई खे ॾिसी सघंदा आहिनि कि किथे पहुती आहे के डॉक्यूमेंट्स घुरबल आहिनि या ॿिए के ज़रूरत आहिनि तिन खे पूरो करे सघिजे थो। सरकार लाइ पिण ई ओसीआई सिरिश्तो पूरी तरह सां ऑनलाइन कार्रवाई आहे जंहिंमें पेपर वर्क ख़तम थो थिए एडमिनिस्ट्रेटिव ख़र्च घटि था थी वञनि डाटा मैनेजमेंट पुख़्ती थी थिए ऐं हिकिड़ो सेंट्रलाइज़ सिस्टम रहे थो। FCR2 पोर्टल ऐं ई ओसीआई कार्ड खे या शुरू करण सां घर वज़रात बहितर गवर्नेंस ऐं अवाम लाइ बहितर सर्विस डिलीवरी सिस्टम आंदो आहे। तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम अदबी गुलशन प्रोग्राम जो आगाज करियो नारायण श्याम जे आवाज में शेर व शायरी जे इस्म सां।
2: कुछ रुबायूं पेश आहिनि। धरतीअ में खुपी वियसि अखियूं शर्म विचां, मुरकियाई बि त चपनि में मर्म विचां। ॻाल्हायां पर अलाए जे छा समझे, नालो बि पुछसि मून इन्हीअ भर्म विचां। नेवड़नि में निज़ाकत छा छुड़ियल वारनि जी, प्यारी थी लॻे हर का अदा प्यारनि जी। झटको ॾेई जीअं वार हटाए मुंहं तां, धड़कन थी लॻे छाती नज़र वारनि जी। छो ॾीठ सॾे मूं ते छंडी छो अञा, छो ॾीठ छॾे सॾे मूं ते छंडी छो अञा। मां पंहिंजे ते ॾिस मुर्क मढ़ियल मोह अञा। जेकी बि चवी थी चओ दिलि सां थी चवी, जेकी बि चवी थी चओ दिलि सां थी चवी। आहे जे ईअं ॾींहं भली ॾोह अञा। गंभीर ईअं मोह तो बणाई छो थी, गंभीर ईअं मोह तो बणाई छो थी। ख़्वाहिश खे अला पंहिंजे सिकाई छो थी, लुकड़ी चौथियाई हेठ मथे छातीअ ते। दिलि में की अथी मूंखां लिकाई छो थी, लुकड़ी चौथियाई हेठ मथे छातीअ ते। दिलि में की अथी मूंखां लिकाई छो थी। आहिस्ते उथी थे मूं वटां जीअं ई वई, आहिस्ते उथी थे मूं वटां जीअं ई वई। माणे सां मुड़ी बांह जी हुन लोड कई, कमरे में पखिड़जी वई सुपनील सुगंध। बूकियल वल वाव में लुडी भाए पई, चेहरे ते ख़ुशी अखि में गराई आहे। चेहरे ते ख़ुशी

0: अख में गराई आए, हर चाल में शाम चिलविलाई आए, ॾिस कीअं नथी पेर पेर में पाए अचे, आईने में मुंहं पक ॾिसी आई आहे, चेहरे ते ख़ुशी अख में गराई आहे, हर चाल में शाम चिलविलाई आहे, ॾिस कीअं नथी पेर पेर में पाए अचे, आईने में मुंहं पक ॾिसी आई आहे, आईनो अॻियां होसि ॾिनाई पे फणी, आईनो अॻियां होसि ॾिनाई पे फणी, को अक्स पियो नार ॾिसी मुग्ध बणी, आईनो अॻियां होसि ॾिनाई पे फणी, को अक्स पियो नार ॾिसी मुग्ध बणी, प्रीतम अची चुपचाप पुठियां बीठो होसि, प्रीतम अची चुपचाप पुठियां बीठो होसि, आईनो गले सां लॻायई खणी, खाउसी मिलियल फूल रखियो मूं चप ते, खाउसी मिलियल फूल रखियो मूं चप ते, ॾिसंदे चकु पाताई चपनि खे पंहिंजे, खाउसी मिलियल फूल रखियो मूं चप ते, ॾिसंदे चकु पाताई चपनि खे पंहिंजे, मोटाए विधुम फूल संदसि चोटे में, मोटाए विधुम फूल संदसि चोटे में, धीरे धीरे हाणे त फड़कियसि चप ते, इन बिंब भिरन हेठ मधुर शांत बखे, इन बिंब भिरन हेठ मधुर शांत बखे, छा नर्म निगाहुन में थी श्रद्धा चिमके, तुलसीअ ते चढ़ाए जल घर जी देवी, तुलसीअ ते चढ़ाए जल घर जी देवी, संसार लाइ ताज़गीअ जो वरदान घुरे, तूं कुल मर्यादा जी मूरत उजली, तूं कुल मर्यादा जी मूरत उजली, तूं माण भरी मर्म जी सूरत सुरही, तूं माण भरी मर्म जी सूरत सुरही, हथ जोड़े जीअं कयई नमस्ते, त फुटी ॿिनि डांजुनि में कमल जी हिकड़ी मुखड़ी, हथ जोड़े जीअं कयई नमस्ते, त फुटी ॿिनि डांजुनि में कमल जी हिकड़ी मुखड़ी, ओनो ऐं उल्को तो रखियो हर कंहिंजो, ओनो ऐं उल्को तो रखियो हर कंहिंजो, घर वारनि जो आए वीए जंहिं तंहिंजो, तुलसीअ खे ॾिनी जल त पखियुनि खे चोगो, भायो पोरियो प्यार तो जीवन पंहिंजो, ओनो ऐं उल्को तो रखियो हर कंहिंजो, घर वारनि जो आए वीए जंहिं तंहिंजो, तुलसीअ खे ॾिनी जल त पखियुनि खे चोगो, भायो पोरियो प्यार तो जीवन पंहिंजो, चौधारी माहौल सॼो महिकी पियो, चौधारी माहौल सॼो महिकी पियो, हृदय में को गीत मधुर गूंजी पियो, अहिड़ी कंहिंजी यादि अचानक आई, अहिड़ी कंहिंजी यादि अचानक आई, अहसास मां अहसास ईअं जाॻी पियो, चौधारी माहौल सॼो महिकी पियो, हृदय में को गीत मधुर गूंजी पियो, अहिड़ी कंहिंजी यादि अचानक आई, अहसास मां अहसास ईअं जाॻी पियो, किथ वञिबो मरण बैदि चई कीअं सघिजे, किथ वञिबो मरण बैदि चई कीअं सघिजे, गर्भासी उते यान ॾसे केरु सघे, इंसानी वजूद आहे मगर जेसी हिते, गर्भासी पिया नर्म चपन ते उनजे, किथ वञिबो मरण बैदि चई कीअं सघिजे, गर्भासी उते यान ॾसे केरु सघे, इंसानी वजूद आहे मगर जेसी हिते, गर्भासी पिया नर्म चपन ते उनजे, आख़िरी दुबई आहे, आलाप मधुर तान में ऐं रूपवती, तब्दील कयम तुंहिंजी मिठी सूंहं सॼी, आलाप मधुर तान में ऐं रूपवती, तब्दील कयम तुंहिंजी मिठी सूंहं सॼी, संगीत ऐं जीव कंठ जेसी हूंदा, संगीत ऐं जीव कंठ जेसी हूंदा, घटि बि नसंदे रूप रती चंद्रमुखी, संगीत ऐं जीव कंठ जेसी हूंदा, घट बि न संद रूप रती चंद्रमुखी।
1: जनाब नारायण श्याम खां शेर शायरी जो सुंदर ही अर्शद ॿुधूं, नंढी कहाणी कहाणीकार जनाब एम कमल।

0: खां कटिजी वियो हो, मूंखे इहा ॼाण न हुई। मूं संदसि लगर न कटियो हो, मां परियां हटी वियो होसि, ॿिन्ही खां हटी दूर थी वियो होसि। हिकु अरसो शहर छॾे ॿिए शहर में दरो जमायो हुउमि। हिकु वधीक नौकिरी कई हुयमि, कॉमेडी, यस कॉमेडी। शरद मुंहिंजो दोस्त कम रकीब, ऐं मां शरद जो पुराणो तारीख़ जे किताब में गुम थियल हिकु दोस्त। असीं छांव मां शरद जे ऑफिस तरफ़ वधी रहिया हुआसीं, सिधो ई सिधो। लॻुमि रिश्ता कॾहिं बि सिधा न थींदा आहिनि, लगर जे डोर जा लॻंदा सिधा आहिनि, लेकिन उलझण ऐं कटिजण में अखछिम हूंदा आहिनि। रिश्ता मरी बि वेंदा आहिनि, लाश खणी वेंदा आहिनि, ऐं उन ख़ाली टुकर खे भरण लाइ ज़िंदगी ऐं उन जी गरमाश अॻियां रड़ंदी ईंदी आहे ऐं उहे ख़ाली टुकर वालाए छॾींदी आहे। दुनिया भर में गुफ़्तगू जा सैकड़ो मौज़ो हूंदे बि न ॼाणा छो मूं वटि शरद सां ॻाल्हाइण लाइ कुझु बि न हो। को वक़्तु हो जॾहिं हासिल जे रूम में राति जूं रातियूं असीं संगीत, चित्रकला, फिल्मनि जे विषयनि ते बक बक कंदे कंदे जाॻंदा रहंदा हुआसीं, ऐं अचानक शरद पुछंदो हो, हिकु चांहि पी वठ, पोइ मां तोखे बांसुरी ते हिकु नई ज़ुर्म ॾाईंदुसि। बिल्कुलु ओरिजिनल, कॉपीराइट मुंहिंजी आहे, पनालाल घोष बि आवाज़ आणे सघंदो। असांजे गुफ़्तगू जे खरखराड़ बैदि शरद जी चांहि ईंदी हुई, ऐं उन बैदि शरद जी बांसुरी, ऐं बांसुरी जी धुन वॼंदे वॼंदे असीं उन धुन जे मिठी मिठी निंड ओॾे सुम्ही पवंदासीं। सूरज निकिरी वेंदो हो ऐं असांखे ख़बर न पवंदी हुई। असीं ॿई रुकजी वियासीं, साम्हूं शरद जी ऑफिस बिल्डिंग हुई। ओचितो हिन ॻाल्हाइणु शुरू कयो, ॼण वक़्त जे ख़्याल खे किचरे जो दॿो सम्झी खेसि लफ़्ज़ हुन में फिटा करणा हुआ। चयईं, छहनि अठनि महिननि खां पेट जी तकलीफ़ अथमि, दवाऊं त ज़हर आहिनि, समरो ॾींहुं दवाऊं ई खाईंदो आहियां। ॾिस न, अॼुकल्ह वॾे शहर में खाधे ऐं दवा में कहिड़ो फ़र्क़ु बचो आहे। हू बिना मतिलब ॻाल्हाए रहियो हो ऐं समूरो कूर ॻाल्हाए रहियो हो। मूंखे इहा ॼाण हुई, मूं ॻाल्हाइण नथो चाहियो, इन करे चुप होसि। हुन बि ॻाल्हाइण नथो चाहियो, इन करे ऊट पटांग जो सहारो पियो वरितईं। कंहिंखे बि, मूंखे बि, हुनखे बि को बि फ़र्क़ु न थिए पियो। इट वॉज़ कॉमेडी। मूं संदसि कोले ते हथु रखियो, ओके शरद, हलां थो, वरी मिलजांइ फुर्सत में। हा हा, वरी मिलंदासीं फुर्सत में। मां अॻियां वधी वियुसि, नक सां सिधो रस्ते ॾांहुं सिधो निहारींदे। सोचियुमि, लंच रूम में शरद कांच जे दीवार पुठियां हो, मुंहिंजे साम्हूं त न हो। दीवार कांच जी हुई, सोचा अगरि हू साम्हूं हुजे हा त मुंबईअ जे टिपिकल शख़्स जा सोच में समूरो ॿुॾल रहण सबबि ॾींहं जो अंधो बणिजी खेसि हिकु ख़ाली ज़ीरो निहार सौंपे मां अॻियां वधी वञा हा त कहिड़ो मुश्किल कमु हो। पर मूं ईअं न कयो हो। हिकु बार वरी मूं पाण खे ई ठॻींदे पकड़े वरितो हो, ऐं पोइ पाण खे ई नज़रअंदाज़ करणो हो। ज़ख़्मियल अहम खणी ज़ीरो जो रहणो हो।
1: कहाणी ॿुधी आहे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोहर्ट से बुधी रहा है। हिंसर असंज प्रोग्राम जो वक्त पड़ोसी रहा है वे असा गजाणी थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तीन मोकल सदाईगढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुगा ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सत्यन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकायची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Lieutenant Governor Manoj Sinha, Jammu and Kashmir, flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. Our correspondent reports that the 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on 28th of August. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. Health Minister Jagat Prakash Nadda chaired a high-level review meeting on dengue preparedness in Delhi yesterday. Addressing the meeting, the Health Minister emphasized that the state and municipal bodies be ready to proactively anticipate and prepare for any potential upsurge by clearly demonstrating their readiness. He called upon states to actively engage ward commissioners, elected representatives and resident welfare associations in awareness and prevention efforts. The Jharkhand government has issued a statewide health alert following the death of at least 4 malaria patients in East Singhbhum district. The state government has directed all deputy commissioners

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने भजन सुनी आवाज थी सुरभि शर्मा की। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्लस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ अल्पना, आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

साथियों, हर सुबह हमें जिंदगी एक नया मौका देती है। उठो, मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाओ। आपकी सुबह भी खूबसूरत हो और भी खूबसूरत बने इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

0: सुबह की एक सकारात्मक शुरुआत आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना देती है। जी साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
1: हंसो मत, बोलो।

साथियों कहते हैं ना, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। जी हाँ, अगर हौसलों में उड़ान है तो आप किसी भी सफलता को पा सकते हैं। बस जोश जुनून बरकरार रहना चाहिए।

पक्षियों नेचर यानी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और उसमें रहती। पक्षियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कभी भी वो नहीं घबराते किसी डाली पहनने से, क्योंकि उन्हें अपने पंखों पे भरोसा होता है।

हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है पक्षियों से कि वो अपने पे भरोसा करते हैं और इसी तरह उड़ते रहते हैं। तो चलिए अपने पे भरोसा करिए और पक्षियों से ये प्रेरणा लीजिए और अपने सपनों की उड़ान को कभी भी कम होने न दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सतलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते

0: में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई

0: और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा। वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के दम पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा

0: Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सबसे तेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्कु है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामनिगार ने इत्तला दी है कि इक्तिसादी सलामती को ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मज़ीद तफ़सील हमारे नामनिगार से।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम आदमियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इतलात और मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के करीबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तबाउल के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50 जन हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, एमएसए, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान के वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल के मुंतजिर हैं।

0: रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रूपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रूपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 3-2 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शेसुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इंकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अदा करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान के वजीर आजम सिनाए तिकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। गंगा प्रताप की खबर है, बैन अक्वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख्फीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरंदा

0: आबादी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कार्यक्रम सुर गंगा जिसके अंतर्गत आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम सुनेंगे राग मियां की तुमरी में गायन, कला गाये हैं अमीन खान।

கடலே தான்.

誰がまだ

俺だれ。

上永远的独立。यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।

0: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। यह केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझें, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
1: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो, या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू में है, चाहे समय का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, यानी जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
0: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फॉर्मेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, आस पास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते हैं।
0: तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
1: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
0: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें?
1: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, जैसे बड़े

0: विश्वविद्यालय है, IIT, IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में छोटे विश्वविद्यालयों में इनमें भी एक कल्चर आ रहा है और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
1: धर्मेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए?
0: आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांवों की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी के एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहां पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती हैं, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी तब नई शुरुआत करते हैं और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: धर्मेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है?
0: AI को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवर स्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि AI का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ AI के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं AI के

0: के साथ कन्ना मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो आप डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूं, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूं, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूं। तो सोशल मीडिया एक डबल एज सोर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है।
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं,
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही, स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है। उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हरेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल, मशीन, मनी, पर आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है। ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशियंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो उसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं, होना भी चाहिए, ये एक इफिशियंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है। होता है और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर रविंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबगाही। आगाज कर रहे हैं हम तो बारी ताला से, पेश कर रहे हैं सलाउद्दीन अहमद और साथी।

0: तुझे को शाया है,
1: तुझको देना गुरू

रही थी सलाउद्दीन अहमद और हमदवा। और अब सुबगाही प्रोग्राम के तहत समाप्त कीजिए नाते रसूल पाक, पेश कर रहे हैं जनाब बदर नजीर।

0: பல்லம் விருதுரகு ஹரேலம் ஹரேலம் சல்லல்லாஹோ அலைஹி வஸல்லம்.
1: आप सुन रहे थे नाते रसूले करीम, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
2: श्रोताओं, समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, आपको उन जानकारियों से रूबरू कराने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनकी आपको आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस कड़ी में बात करते हैं पहले आज के दिन यानी 2 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो वर्ष 1698 में आज ही की तारीख को थॉमस सावेरी ने भाप इंजन को पेटेंट कराया था। और 1777 की बात करें तो अमेरिका के वर्मेंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति भी आज ही की तारीख को हुई थी। स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने वर्ष 1983 में मद्रास के निकट कलपक्कम में आज ही की तारीख से काम करना शुरू किया था। अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जयंती है।
3: यस yes.
2: जी, आज श्रोताओं पुण्यतिथि है असित भट्टाचार्य की। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। असित भट्टाचार्य शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे और उन्होंने क्रांति दल के सदस्य के रूप में भी सदस्यता ग्रहण की थी। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में मां भारती के इस महान सपूत को फांसी दी गई। श्रोताओं, जयंती है मोहम्मद अजीज की। वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। साल 1984 में वे मुंबई आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के दशक में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। अगर हम बात करें उनके प्रसिद्ध गानों की तो आपके आ जाने से, कागज कलम दवात, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माय नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया होगा और ना जाने कितने ही ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों की जबान पर चढ़े हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ये सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, जयंती है कालीचरण चरण पाणी ग्रह की। वे प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे। वे अपनी महान कृति बतीरा मनीषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें उड़िया साहित्य में योगदान के लिए वर्ष 1971 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण के काव्य में प्रणय चेतना के मुख्य आधार कुछ इस प्रकार है कि प्रेम लज्जा का विषय नहीं, वो युवाओं का अधिकार है। प्रेम शाश्वत है। प्रेमी एक दूसरे के परिपूरक तथा मुक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक भी हैं। और इसी के संदर्भ में हिंदी का एक दोहा भी है कि इस असार संसार में केवल प्रेम रतन धन सार। क्योंकि प्रेम से जीवन आकर्षक बनता है, इसी प्रेम को पाने के लिए कवि कालिंदी चरण बार बार जन्म लेने की तमन्ना रखते हैं। जिस संसार को लोग दुखमय मानते हैं, वो संसार प्रेम के कारण स्वर्ग बन सकता है। आज ही जयंती है आशालता बावगांवकर की। वे महाराष्ट्र व मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई धारावाहिकों से भी घर घर में लोगों के दिलों में खूब पहचान बनाई। वे गोवा की रहने वाली थी और उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाए ताकाची के साथ सरबराह सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% छह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर्स शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फजाई आलूदगी मास्टर प्लान नोटिफिकेशन जारी किया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाए ताकाची के साथ सरबराह सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबराह सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी ताउन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाची का भारत के लिए ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारिजा ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी करीबी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि इक्तिसादी सलामती और ताल्लुकात का एक कलीदी सतून समझ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाची के साथ वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी करीबी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेजबानी करना उनके लिए बायस मुसर्रत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा तकाइची की मुश्तरका कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बैरुल कायल और इससे आगे भी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफ स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया है। ईपीएफओ ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के ईपीएफ खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री को अगले साल 14 जुलाई तक

एक साल की तौसी दे दी है। जनरल मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर रिवायती नूनवान पहलगाम और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सतही सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करें। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त मान्यता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह सरगर्मी से जारी है। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज करा लिया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जून मगरबी मानसून के अगले दो दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमा ने अगले दो दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश की कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरागोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुजरिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने के लिए मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासरा खातून को उन नामालूम अफराद की तरफ से धमकी भरे फोन मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसिलाब दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे तौर पर दावा किया था कि मोहम्मद खातून शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी में इस्तेमाल किया गया था और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मुतवर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कोर्टी का हुक्म भी जारी किया था। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रूपये रिफंड भी किए गए थे। ईरान और अमरीका के दरमियान साजिशकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। कतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए एक बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस माह की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामनेई के आखिरी रसूमात के बाद मुजाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम फाजिल वक्त में सेनेगाल को 3-2 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है और इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमेरिका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फाते से होगा। कल रात एटलांटा में इंग्लैंड ने जमहूरी रिपब्लिक ऑफ कांगो को 2-1 से शिकस्त दी। अब 6 जुलाई को प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना मुश्तरका मेजबान मैक्सिको से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर लेट स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबराह सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8

0: 2.5% छह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश खिदमत है अखवाले जर्री का प्रोग्राम शमे फरोजा। आज का मौजू है सआदतमंदी।
2: इंसान की बनावट कुछ इस तरह हुई है कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए जहां मादी अशिया दरकार होती हैं, उसी तरह उसे कुछ मानवीय अशिया भी दरकार हैं, जिनमें अहम तरीन शय इंसानी जिंदगी को संवारने के लिए अच्छे अखलाक हैं। अखलाक के बगैर आदमी बशक्ल इंसानी हैरान है। अखलाक की इसी अहमियत के पेश नजर जहां जहां भी इंसानी मुआशरे कायम हैं, वो बाहम रहने के लिए कुछ अखलाकी कदरें वजा करते हैं और अपने मुआशरे के अफराद को उनका पाबंद बनाने की कोशिश करते हैं। अफराद खाना, अहल खानदान, महल्ले और बस्ती वाले इलाके वाले इन तयशुदा और मुकर्रर करदा अखलाकी कदरों को अपने मुआशरे के अफराद में पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर मुआशरे में रहने वाला फर्द अखलाकी कदरों का पाबंद होता है। अगर वो अखलाक की पाबंदी करता है तो उसके साथ रहने वाले लोग, खासकर उसके अहल खाना, अहल खानदान और अहल महल्ला उसकी इज्जत करते हैं और उसका नाम बड़ी इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। इन अखलाकी कदरों में रिश्तों के तकद्दस का ख्याल, बड़ों का एहतराम और अदब, छोटों पर शफकत, माफ करना, हमदर्दी करना, पड़ोसियों के साथ निहायत एहतराम से पेश आना, असाज़ा का अदब, माँ बाप का ख्याल और एहतराम, औलाद का इकराम और सआदतमंदी का जिक्र किया जा सकता है। सआदतमंदी का मतलब यह है कि इंसान अपने वालदैन और वालदैन के बराबर का रिश्ता रखने वाले लोग, असाज़ा इकराम का ख्याल रखने वाला और फर्माबरदारी करने वाला हो, यानी हर हाल में कोशिश ये करे कि मेरे वालदैन या उनका रुतबा रखने वाले हजरात को मेरी जात से तकलीफ न पहुंचे और उनकी हर बात मानने की कोशिश करता रहे। बाज बातों में अगर इसको बजाहिर नुकसान नजर आता है तो भी अपने वालदैन की राय, अपने असाज़ा की राय, अपने बड़ों की राय को तरजीह देता रहे, उनकी खिदमत करने को अपने लिए बाइस सआदत समझता रहे और अगर उनकी किसी बात से इख्तलाफ भी हो तो उसको बड़ी नरमी के साथ, इंतहाई तवाज़ो के साथ कहे। अगर कोई शख्स इस तरह अपने बड़ों की, अपने असातिज़ा की फर्माबरदारी करता है तो उसको आप और हम सआदतमंद इंसान से ताबीर करते हैं। इन्हीं कामों को हुस्न खूबी के साथ बजा लाने का नाम सआदतमंदी है। सआदतमंदी इंसान में दो चीजों से पैदा होती है, नंबर एक तवाज़ो और नंबर दो नरमी। आज हम और आप अगर अपने मुआशरे का जायजा लें तो महसूस होगा कि जैसे लोगों के अंदर से फर्माबरदारी और सआदतमंदी का जज्बा सलब हो गया हो। सोशल मीडिया के कसरत के इस्तेमाल ने इस अंदाज और लोगों को मुतकब्बर बनाने में बड़ा ही खराब किरदार अदा किया है। सआदतमंदी के फुकदान ने घरों में, खानदानों में, महल्ले वालों में, पड़ोसियों में अनाद और हसद और बुख्स को बढ़ावा दिया है। घर इसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। सआदतमंदी के जज्बों के फुकदान में सबसे बुरा किरदार उन स्कूलों का है जहां बच्चों को बात मनवाने का आदि बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को बचपन ही से इस बात की आदत होगी कि उसकी बात मानी जाए, तो फिर बड़े होकर हम और आप इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक उसके सलूक में तब्दीली रूनुमा हो जाएगी कि वह आपकी बात मानने वाला और आपका सआदतमंद बनकर माशरे का फर्द बनेगा और मैदानी अमल में कदम रखेगा। इसको तो बात मनवाने की आदत है जिससे इंसान की तबीयत में तकब्बुर पैदा होता है। फिर अगर इस मरहले पर उसकी बात नहीं मानी जाती तो उसकी अनानियत सामने आने लगती है और वो बदजबानी, बदकलामी और बदसलूकी पर उतर आता है। और अगर बफर्ज़ मुहाल वो तबीयतन नरम भी है, फिर भी रद्दअमल के तौर पर उसके अंदर सख्ती के जरासीम

0: पैदा हो जाते हैं, जिनके नुकसान सबसे ज्यादा माँ बाप, बीवी बच्चे, घर वाले, अहले खानदान और आस पड़ोस में बसने वाले इंसान उठाते हैं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलादी मुआशरे के लिए आने वाले अफराद सादतमंद और फरमाबरदार हों, तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपना तालीमी निजाम को मजीद बेहतर करें, बल्कि इससे भी खुद अपने रवैयों का जायजा लें कि क्या हम गैर शऊरी तौर पर अपने बच्चों को अनानियत और तकब्बुर पर नहीं सिखा रहे हैं, क्या हमारा मिजाज अनानियत पसंद खुद पसंद तो नहीं है। इस वक्त हमारे माशरे को सादतमंदी के जज्बात अपनी आइंदा आने वाली नस्लों में पैदा करने की इंतहाई जरूरत है, नहीं तो आइंदा नस्लों में हमारे और आपके माशरे दुश्मनियों, हसद और बोस की आमाजगाह बन जाएंगे।
1: अभी आपने सुना अखवाले ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू था सआदतमंदी। तहरीर जनाब उवैस सिद्दीकी की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। आज के प्रोग्राम में सुनिए निर्मला अरुण से शकील बदायूनी और मिर्जा गालिब का कलाम, और सलीम अहमद से हम आपको सुनवाएंगे जिगर मुरादाबादी और एहसान दानिश का कलाम।

0: 70 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी है चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष एआई सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है, उनका स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: तो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत

0: विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
1: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
0: उत्पल जी आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ कुसुम जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो

0: वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी ज्यादा नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है। और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को तो कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया। और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ करके इस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी कंप्यूट एप्लीकेशन भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में, पहला था यूएस ओरिएंटेड जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे, तीसरा चाइना सपोर्टेड था जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है, इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रूपये का भुगतान हुआ, वो भी एआई है, वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके बता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स और एक्सपर्ट्स है उनको

0: ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप किस देखते हैं इसे?
2: तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशन AI फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीजें ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर विमेन इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूं। तो ये मॉडल जो है, इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हैं। वही AI का अभी कुसुम जी ने बात किया कि AI कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुनिए, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज है, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स है वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जेम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तो मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सिंगल थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इको सिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा IRBI का एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजिली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इको सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंट्रल स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमीकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को, इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर के चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। पीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई। और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवरेनिटी प्रोवाइड करेंगे। और आपकी बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, आज हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया, जो यूज हुआ वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी

0: उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है जी। और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने का।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके फिर हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने पुष्पन जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो रन करता है, जो जीपीयू भी रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक ले जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। और जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या फिर वो आ रहे, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या एसएमएस या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी डिजिटल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है

0: कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में। ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन करे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसे पहले पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशन या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर आप हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्रीस्टेक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोग को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारे स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग, तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओ, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।

0: चर्चा का विषय है।
1: अभी आपने सुना प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन में सितारे लपेटे हुए

जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा।

ढीला ढीला कुर्ता पजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। थोड़ा बिक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ, काम नहीं।

के जाएगा तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा।

मोहम्मद रफी को आपने सुना पतंगा फिल्म में, और आज के प्रोग्राम के आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है दुल्हन।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था दुल्हन। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस दस्तयाब है। अब सुनिए मोहतरमा नूरजहां परवीन की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी, एक धुंध भरी शाम।

शाम के सुर में अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। अलगड़ी पर चमकने वाली मानूस जरदूप हजबे मामूल निखत की तस्वीर तक पहुंची। मुस्कुराकर उसे देखा और चुपके से दबे पांव निकल गई। मैं टहलता हुआ बालकनी में निकल आया। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैंने सिगरेट सुलगाया और दूर तक का मंजर देखने लगा। अचानक मेरी भटकती हुई निगाहें मुकाबल की बालकनी में जाकर ठहर गई। बालकनी में कोई लड़की खड़ी थी। अकेली अकेली सी तन्हाई का जलता हुआ दामन थामे वो मेरी बालकनी की रोशनी से भी हिरासा नजर आ रही थी कि वो बाएं जानिब बालकनी के अंधेरे गोशे में खड़ी थी, बाहर में खिलने वाले अकेले फूल की तरह, जिसकी तन्हाई उसे डसकर मौत की नींद सुला देती है।

मैंने अपनी बालकनी की रोशनी बुझा दी। इस अंधेरे में मालूम नहीं क्यों मेरी धड़कनों के फूल खिल उठे। मैं चोरी चोरी क्यों उसकी तरफ देख रहा हूँ, कहीं अंधेरे महक न उठे, कहीं मेरी धड़कनों की चोर खुशबू उस लड़के तक न पहुंच जाए। इस मुजरिमाना एहसास ने धड़कनों के फूल मुरझा दिए। जहन से फैलने वाली रुपहरी सड़ चांदनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में ढल गई। मैं फौरन अपने कमरे में आ गया। अलमारी पर निखत की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। औरत के बगैर जिंदगी एक अजियत है, इस तरह के जुमले मैंने कई बार निखत की जुबान से सुने थे। और बिस्तरे मर्ग पर निखत ने कई बार मुझसे वादा लिया था कि मेरे बाद तुम शादी जरूर कर लेना।

मगर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? बालकनी वाली लड़की की तरह हजारों लड़कियों से मेरा सामना होता ही रहता है, लेकिन इससे क्या होता है? दूसरी सुबह जब मेरी आंखें खुली तो दरीचे से सितंबर की खुशगवार हवा आ रही थी। चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। वॉश बेसिन पर मुंह हाथ धोकर जब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो गुज़श्ता शाम वाली लड़की फिर बालकनी में खड़ी थी। वही उदासी और तन्हाई का जलता हुआ दामन थामे इन खूबसूरत आंखों को किसका इंतजार है? मान मुझे ख्याल आया, मेरे कमरे में लगी तस्वीर में जान तो नहीं पड़ गई? ये वो शबे

यार की लड़की तो नहीं जिसके पलकों के चिलमनों के पीछे आंखों की काफूरी शमी रोशन है। लड़की की नजर अचानक मुझ पर पड़ी और सहम कर हट गई। उस वक्त मेरी जुबान से बेख्तियार ये नगमा निकला।

लेकिन धीरे फैशन ने मुझे शाजिया के बेहद करीब कर दिया और फैशन मेरे पास खड़ा होकर बालकनी से चीख चीख कर बातें कर लेता था। एक शाम जब वो शाजिया से इसी तरह की बातें कर रहा था, मैंने उसे सरगोशी के लहजे में कहा, उसे कहो यहाँ आ जाए। मैंने महसूस किया कि धड़कनों के फूल फिर खिल उठे हैं और उनकी चोर खुशबू रजिया तक पहुंच गई है। आप? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फैसल, तुमने इन्हें लाख तकलीफ दी, आप ही ने इन्हें बुलाने को कहा था। फैसल इठलाकर बोला, बड़ा शैतान है ये लड़का। मैंने चंचल होकर कहा, दरअसल मैं खुद ही आना चाहती थी, उसने सरगोशी के लहजे में कहा और सोफे पर बैठ गई। मेरे दिल के करीब रेशमी उजाला गहरा होता जा रहा था। उसके होंठों की लाली शफक के सुरखों की तरह माहौल में बिखर गई और ऐसा महसूस हुआ कि शब इंतजार की लड़की तस्वीर के निहा खाने से अचानक मेरे सामने आ गई थी। ये तस्वीर किसकी है? शाजिया ने कमरे का जायजा लेते हुए मुझसे पूछा। मम्मी की, फैसल ने उसकी गोद में बैठते हुए कहा। ओ, तुम्हारी मम्मी की तस्वीर है ये? हाँ बाजी, मैंने कहा था ना कि किसी दिन मम्मी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। फैसल बड़ा ही शरीर है, काफी परेशान करता होगा आपको, मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। नहीं तो, मुझे तो उसकी हर अदा पसंद है, उसने बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से फैसल की तरफ देखते हुए कहा। वो तकरीबन घंटा भर तक बैठी रही, फैसल की तारीफ करती रही, यहां तक कि वो उसकी गोद में ऊँघने लगा। शाजिया के होठों पर खुद ब खुद एक लोरी मचलने लगी।

दूसरे शाम फैसल ने बताया, बाजू को बहुत तेज बुखार है, वो बहुत रो रही थी। ये कहते हुए फैसल का गला रुंध गया। उसने साजिया के यहाँ जाने की फरमाइश की। उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ा। उस रात फैसल साजिया के साथ ही रहा और उसकी अदम मौजूदगी में मेरी तन्हाई मेरे लिए और भी सुहाने रूह बन गई थी। मुझे याद है कि उस रात मैं बिल्कुल न सो सका। बस सुबह आंख लगी थी कि फैसल मैं अपनी बाजी के मेरे सरहाने खड़ा था। हम आ गए। फैसल की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, मगर फैसल ने तो बताया था कि बस यूं ही तबीयत जरा बोझल हो गई थी। और मुझे याद है कि फैसल और शाजिया ने मुझे दफ्तर के लिए इस तरह रुखसत किया जैसे निखत किया करती थी। फिर वो दिन भी आए कि शाजिया सुबह सवेरे आ जाती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, जबरदस्ती मेरे जूतों पर पॉलिश करती और निखत की तरह मुझे दफ्तर रुखसत करती और फैसल को लेकर अपने घर चली जाती। और मैं जब दफ्तर से आता तो कमरे साफ सुथरे नजर आते, चीजें करीने से सजी होती और चाय तैयार मिलती। फैसल, मैं और वो रात गए तक कैरम खेलते रहते और वो फैसल को लेकर अपने घर चली जाती या कभी मेरी जिद पर छोड़ भी जाती। उस वक्त उसके चेहरे पर जर्दी से फैल जाती। यही वजह थी कि एक शब्द मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शाजिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें यहां से जाने की जरूरत ही न पड़े? मेरे इस जुमले ने अचानक हलचल से मचा दी। उसके चेहरे का तासुर एकदम बदल गया। आंखों में छुपी हुई वीरानी उभर आई और रुखसार जर्द पड़ गए। मेरा ये जुमला जैसे तूफान था जिसमें वो कटी हुई पतंग की तरह डगमगा रही थी। मेरे दिल के फूल मुरझा गए। मैंने उसका हाथ इस तरह छोड़ दिया जैसे सरसब्ज शाख से कोई फूल टूटकर बिखर जाए। बड़ी देर बाद उसने उदास लहजे में कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता सलीम साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी आवाज में लर्जिश थी। मैं फैसल की सौतेली मां बनना नहीं चाहती और कबल इसके कि मैं उससे कुछ कहता वो बिजली की तेजी के साथ उठी और मेरे गिर्द सन्नाटा फैलाकर चली गई। मैं उसे रोक भी न सका।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा नूरजहां परवीन की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी एक धुंध भरी शाम। रावी थे एसएम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असेंबलिया से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाए टकीची के साथ सरबराह सतह के सालाना मुज़ाकरात कर रहे हैं। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुद्दत मुलाजमत में अगले साल 14 जुलाई तक तौसी दे दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस कारों के जरिए जारी बिलावास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अक्वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाए टकीची के साथ सरबराह सतह के सालाना मुजाकरात कर रहे हैं। सरबराह सतह के मुजाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म टकीची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे।

मोहम्मद रफी के साथ आपने सुमन कल्याणपुर को सुना। फिल्म थी मिस बॉम्बे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं बाप रे बाप फिल्म का नगमा। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं।

मोहम्मद रफी के साथ आपने सुना लता मंगेशकर को। ये नामा था शागिर्द फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, फिल्म है दुनिया।

باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ سوچا

कमरे में बंद हो और चाबी को जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो।

लता मंगेशकर और शैलेन्द्र सिंह की आवाजों में ये नगमा था बॉबी फिल्म से। अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म है जीवन मृत्यु।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का।
1: हिंदुस्तानी जमालियात का सबसे अहम और सबसे पुराना माखज भरत मुनि की एहद आफरी किताब नाट्य शास्त्र है। सदियां गुजर गई मगर ये किताब आज भी हमारे एहसास हुस्न की शनाख्त का सबसे रोशन, सबसे मोतबर और माना खेज वसीला समझी जाती है। एक आम अंदाजे के मुताबिक ये किताब अब से लगभग 1400 बरस पहले छठी सदी ईस्वी में लिखी गई। आठवीं सदी ईस्वी में अभिनव गुप्त ने इस अजीम शान इल्मी दस्तावेज की एक शरह तरतीब दी थी। बाज उलमा का ख्याल है कि महाकवि कालिदास की तख्लीकात में भरत मुनि के अफकार की गूंज साफ सुनाई देती है। इस तरह ये किताब दूसरी सदी ईस्वी की तसनीफ भी हो सकती है। बहरहाल इस मफरूजे की बुनियाद महज एक कयास है। इस किताब की अजमत और शोहरत का इन्हिसार इंसानी जज्बात और कैफ

0: शिक्षात की वो जहानत आमेज एहाता बंदी है जिसे भरत मुनि ने रस सिद्धांत से ताबीर किया था, यानी इंसान के तखलीकी और जमालियाती अमल नीज रद्द अमल से वाबस्ता एक मजमूई तसव्वुर। भरत मुनि ने इस तसव्वुर की 8 शिकें कायम की थी। हर शिक किसी न किसी बुनियादी जज्बे की तर्जुमानी करती है। आराइश, मसरत, अफसरदगी, गुस्सा, शुजात, खौफ, नफरत और हैरत इंसानी नफ्सियात के कलीदी रवैये हैं। एक नवा रवैया सुकून या शांत रस का है, जिसकी जानिब भरत मुनि ने अपनी किताब में चंद मुहम इशारे किए हैं। शांत रस को एक बुनियादी जमालियाती कैफियत का मकाम भरत मुनि के बाद जमालियात के एक और आलिम उद्भट ने अता किया। इसके बाद भानवदत्त ने इन कैफियत में मजीद तौसी की राह निकाली। फिर एक दौर वो भी आया जब भक्ति को भी एक भाव के बजाय एक रस यानी कैफियत का नाम दिया गया। ये फहरिस्त बढ़ते बढ़ते बिलाखिर 32 रसों या कैफियत तक जा पहुंची। इस तरह भरत मुनि के नजरियात की एक नई तश्कील और तौसी का सिलसिला बाद के जमानों में जारी रहा, मगर इसमें शक नहीं कि असल बुनियाद वही रही जो भरत मुनि ने मुतय्यन की थी और जिसके पीछे इंसान के नफ्सियाती, फलसफियाना और तबीई रवैयों और सरगर्मियों का मुतालिया कार फरमा था। हिंदुस्तानी शेरियात में रस सिद्धांत को आज भी कदीम तरीन फनी जाब्ते से ताबीर किया जाता है। सनाए बदाए और सौतियात यानी अलंकार और ध्वनि के उसूल इसी जाब्ते की बुनियादों पर उस्तवार हुए। शेरी इजहार के मुख्तलिफ असालिब, इसकी मुख्तलिफ जहतें और सतहें, इसके मुख्तलिफ मफाहीम और मकासिद, इन सब का मखजन और बुनियादी सरचश्मा रस सिद्धांत है। उर्दू में पंडित हबीबुर रहमान शास्त्री ने रस सिद्धांत पर एक किताब लिखी थी। मीरा जी की तसनीफ मशरिक व मगरिब के नगमे में इस मौजू पर एक मुफस्सल मजमून भी शामिल है और जदीद तनकीद में भरत मुनि के कायम करदा तसव्वुरात से इस्तफादे की मिसालें जा बजा मिलती हैं। इससे कता नजर मगरबी माहिरीन जमालियात और उलमाए अदब ने भी पुराने वक्तों के इस हिंदी आलिम के अफकार को नित नए तजियों का मौजू बनाया। जमाने की गर्द तब्दीलियों की कशाकश के बावजूद बाज अफकार को धुंधलाने से कासिर रहती है। आज भी जबकि इंसान के जमालियाती तकाजों, उसके रूहानी मतालबात और उसके फन्नी मजाक व मिजाज में गैर मामूली तगैयुरात रूनुमा हो चुके हैं, रस सिद्धांत की तफहीम और इस जमालियाती जाब्ते की रोशनी में मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी, ड्रामे, रक्स, संगतराशी और मुजस्मे साजी के अमल का तज्जिया एहसास व इदराक की मुख्तलिफ सतहों पर किसी न किसी शक्ल में जारी है। इसकी वजह यह है कि रस सिद्धांत के वास्ते से नाट्य शास्त्र शेरियात और जमालियात के एक मुस्तकिल एनसाइक्लोपीडिया की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस बेमिसाल तसनीफ में हमारे सदियों के जहनी और जज्बाती तजर्बे, हमारी दानिश और हमारी हिस्सियात की एक हमागीर और हमाजहत दुनिया समोई हुई है। इस किताब का आगाज एक तमसील से हुआ है, ये कि देवताओं ने तमाम कायनातों के खालिक से दरखास्त की, हे ईश्वर हमें वो राह दिखा जहां हमारी आंखें और हमारी समाअत यकसा तौर पर बसीरत और मसर्रत का सामान पा सके। ईश्वर ने कहा वो रास्ता नाट्य का है यानी जज्बों के इजहार का, जो हमें जिंदगी की हर शक्ल और हर मसर्रत के तजर्बे से रूशनास कराता है। भरत मुनि ने नाट्य के हवाले से रस सिद्धांत की तश्कील की। आज हम इस सिद्धांत के वास्ते से जिंदगी के भेदों तक पहुंचते हैं, जात और कायनात, मौजूद और लामौजूद की हकीकतों तक रसाई हासिल करते हैं। हर सच्ची दानिश की तरह इस दानिश की एक तारीख तो है, मगर इसका जोग्राफिया सिर्फ हमारे देश की सरहदों का पाबंद नहीं है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजूद था रस सिद्धांत। तहरीर डॉ शमीम हनफी की थी और रावी थे अब्दुल जब्बार। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में नगमा था खामोशी फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से आलमी खबरें सुनिए। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम सनाई तकाइची के दरमियान सालाना छोटी मीटिंग जारी है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर्स शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुद्दत मुलाजमत में अगले साल 14 जुलाई तक तौसी कर दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों के तवसत से जारी बिलावास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अवी मैच बारिश की वजह से तर्क करना पड़ा। खबरें तफसील से। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची के दरमियान सालाना छोटी मीटिंग जारी है। इस मौके पर दोनों रहनुमा मुख्तलिफ इलाकाई और बैन अवी मामलात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा बाहमी तआवुन इश्तराक बढ़ाने पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म के दरमियान गुफ्तगू के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत होने की भी उम्मीद है।

0: के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि कम से कम 5 तिब्बती वर्कर उस वक्त जख्मी हो गए जब एक एम्बुलेंस स्टेशन को निशाना बनाया गया। कम से कम एक वर्कर की हालत नाजुक बताई जाती है। अभी फौरी तौर पर मरने वालों की तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरजेंसी अमला एक 9 मंजिला इमारत में फंसे हुए लोगों को तलाश कर रहा है जो हमले की वजह से मुनहदिम हो गई थी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सैफुल्ला झील में एक सयाहती किश्ती के डूबने के बाद 7 अफराद हलाक और एक शख्स लापता हो गया। पुलिस के मुताबिक यह किश्ती जिस वक्त एक कुनबे के 8 अरकान को सैर व तफरी के लिए ले जा रही थी तो ये स्वात जिले में सैफुल्ला झील में उलट गई। राहती टीमों ने 7 लाशें बरामद की हैं और लापता शख्स को तलाश कर रही है। सभी मरने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से है। राहती टीमों ने मौदान इलाके के नजदीक पानी से 7 लाशें बरामद की। हुकाम इस हादसे की वजह मालूम कर रहे हैं। सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने एक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है और अफसरों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में कोई लापरवाही न बरतें और फौरन कार्रवाई करें। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिल कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। फीफा आलमी कप में बेल्जियम फाजिल वक्त में सेनेगाल को 3-2 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है और इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फाते से होगा। कल रात अटलांटा में इंग्लैंड ने जमहूरी रिपब्लिक ऑफ कांगो को 2-1 से शिकस्त दी। अब 6 जुलाई को प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना मुश्तरका मेजबान मेक्सिको से होगा। मर्दों की क्रिकेट में कल रात चेस्टर ले स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अवी मैच बारिश की वजह से तर्क करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 189 रन बनाए जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 59 रन बनाए। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम सनाई तकाईची के दरमियान सालाना छोटी मीटिंग जारी है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नई यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुद्दत मुलाजमत में अगले साल 14 जुलाई तक तोसी कर दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों के तवसुब से जारी बिलावास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अवी मैच बारिश की वजह से तर्क करना पड़ा। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मेरी वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और जापान की वजीर आजम सनाए ताकाइची के दरमियान सालाना छोटी मीटिंग जारी है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर्स शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की मुद्दत मुलाजिमत में अगले साल 14 जुलाई तक तौसी दे दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों के तवसुत से जारी बिलावास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया और मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैनुल अक्वामी मैच बारिश की वजह से तर्क करना पड़ा। देखिए अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप अभी तक सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। दिन के 1:15 होने को है। हमारी आज की पहली मजलिस यहीं इख्तिताम पजीर होती है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

no. Ang आप लोगों से कोई भी बात कभी छुपी रह सकती है? नहीं, इतने इंटेलिजेंट होता है ना हमारे कि इन्हें आप एक क्लू दीजिए और आप यकीन मानिए वो उसी वक्त से पकड़ लेंगे और आपके सामने हर पहेली का जवाब एकदम दे देंगे। हाँ दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर, और हम इसी की बात आज इस पूरे समय आपके साथ करेंगे। तो हमारे बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही हमें अपने जवाब भेज दिए हैं, तो उनके नाम मैं खैर आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, अभी आप ये गाना सुन रहे हैं ना, ये गाना गाया है अलका याग्निक के साथ कुमार शानू ने, और हम इस फिल्म के बारे में आपको हमने बताया था कि निर्देशन किया अब्बास मस्तान ने, के निर्माता थे कुमार एस तौरानी और रमेश एस तौरानी, जबकि संगीत की जो जिम्मेदारी संभाली ना वो संभाली अनु मलिक ने और गीत लिखे समीर ने। फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई वो थे बॉबी देओल और प्रीति जिंटा, जबकि उनके साथ राखी, सुरेश ओबेरॉय, दिलीप ताहिल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, शरद सक्सेना और आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आए। लेकिन दोस्तों, हमेशा हम ना आपको कहानी भी बताते हैं इस फिल्म की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपके साथ हमें ये जानकारियां साझा करनी चाहिए, है ना। तो आज हम ना पूरे समय ये कोशिश करेंगे कि इस फिल्म और इसमें जो पर्दे के सामने नजर आए वो कलाकार, और इसके अलावा पर्दे के पीछे जो कलाकार नजर आए उनके बारे में भी कलाकार ही बोलेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि अगर वो नहीं अपनी कला का जलवा हमें दिखाते तो हमारे सामने पर्दे की इतनी रूपरी दुनिया कभी हमारे सामने कभी आती ही नहीं, है ना। तो हम उनके बारे में आपके साथ में सारी बातें साझा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब मैं क्यों ना बात करूं उन दोस्तों की जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तो हमारे साथ हैं, देखिए बिल्कुल है सुनील पाठक जी, और ये लिख रहे हैं एक ही फिल्म के तहत फिल्म सोल्जर के गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, और इसी खूबसूरती को आज हम अपने स्टूडियो में भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये है हमारे साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार कुमकुम। फिर है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और इन्होंने भी बिल्कुल, देखिए मैं जिन जिनके भी नाम अभी आपके सामने ले रही हूँ ना हमारे दोस्तों की, इन सभी ने बिल्कुल सही हमें जानकारी दी है कि हम फिल्म सोल्जर की बात कर रहे हैं। फिर है ग्राम नागरकोटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बब्लू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, देवी आराध्या साहू, और लिख रही है सोनाली मैम जी नमस्कार। ओहो, देखिए अब यहाँ पर तो मैंने जहाँ बोला कि मैं सही लोगों के नाम ले रही हूँ, ये तो आंसर मुझे गलत मिला है। देखिए बबलू साहू जी, ये बाजीगर नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया ये सोल्जर है। और अरे वाह, क्या बात है, अजीत भावसार जी ने तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी। तो देखिए ना, प्रमीला भावसार जी और अजीत भावसार जी, आप विरमगाम गुजरात से हमारे लिए लिख रहे हैं, आपने सब बता दिया कहाँ कहाँ शूटिंग हुई। देखिए मेरा ना थोड़ा सा आप काम आसान कर दे रहे हैं, तो देखिए वो सारी बातें मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी जो अजीत भावसार जी ने हमें लिखी है। और फिर ये कौन है, ये है जी, ये नोहर राजस्थान से है, नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार, इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये 1998 में रिलीज खूबसूरत फिल्म सोल्जर है। और अच्छा लिखने की, मेरी शादी फरवरी 1999 में हुई थी, उस समय सोल्जर फिल्म और इसके गीत बहुत सुपरहिट थे। तो अच्छा, तो आपको देखिए वो पुराने दिन भी याद आ गए होंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारे इस फिल्म के माध्यम से आप उन सारे दिनों को दोबारा जी लीजिए। और ये है अस्तुपुरा जिला मऊ से मंजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो अभी हम बातें और भी करेंगे। इसके पहले ना इस फिल्म का एक और गाना सुनते हैं, जो सुनकर के आप पक्का पक्का बल्ले बल्ले हो जाएंगे।

सुन रहे हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में ये गीत। और देखिए हुआ ना मन मिजाज बल्ले बल्ले। हम बात करें फिल्म सोल्जर की और देखिए इस फिल्म में ना गाने बहुत सारे हैं, कम से कम तकरीबन 7 गाने हैं इसमें और हम सब गाने आपके साथ में साझा करना चाहते हैं और आपकी बातें भी शुमार करना चाहते हैं। तो हमारे साथ देखिए कौन जुड़े हैं, हमारे साथ संजय ढिंगनिया है, ये है उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया। और फिर हमारे साथ है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और ये गांव हीरा वाली फसल का पंजाब से। फिर हमारे साथ है ये कौन है, गांव जाखूद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक और इन्हीं भी हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और फिर ये है आदाब व नमस्कार बहन जी, फ्रेंड्स रेडियो ग्रुप छोटी बलिया मुंबई कर्जत से। कौन है, अहमद भाई फुलवाली, नूर आयशा अहमद फुलवाली, इमरान अहमद फुलवाली, जूही इकबाल सदफ आरजू, इकबाल अहमद फुलवाली और समस्त फुलवाली फैमिली शुक्रिया। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से है सचिन जांगरा, राजपाला, कार्तिक व वेदांश और इन्हें भी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सोल्जर, शुक्रिया। फिल्म आपने सही पहचानी है। फिर ये है आज में फिल्म सोल्जर गीत की जानकारी दे रही है, यह दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बबलू और डब्लू। और फिर हमारे साथ हैं बबलू और डब्लू, माफ कीजिएगा, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये है छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर है इसहाक मोहम्मद छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफीम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। फिर है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम गगनीचा, विशाल प्रिया।

शानी और निमित आहूजा, शुक्रिया। ये है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार। और ये कौन है? ये है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, इंदिरानगर भवरपुर से। और चलिए धर्मेंद्र सिपा जी का चिरपरिचित ईमेल हमारे पास आ चुका है, पूजा परिवार इनके साथ और कपिल छिपा जी भी हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका नॉलेज से भरपूर पूरी इन्फॉर्मेटिव होता है आपका ईमेल। फिर ये है ग्राम नागरकोड़ा जिला राजस्थान का, आप छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, आपका मैं ले चुकी हूँ। जी जी, आपने उसे करेक्ट कर दिया फिल्म को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे थे फिल्म सोल्जर की और उसकी बातों की। तो आइए अब मैं आपके साथ में जो गाना लेकर आ रही हूँ, दूसरा उसके पहले आपको बता दूं कि हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का समय था कौन सा, 90 का समय। एक और रोमांटिक फिल्मों का जादू था तो दूसरी ओर सस्पेंस और एक्शन पर आधारित फिल्में भी दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। बाजीगर और खिलाड़ी जैसी सफल फिल्में देने के बाद अब्बास मस्तान एक बार फिर एक ऐसा विषय लेकर आए थे जिसमें प्रेम भी था, परिवार भी, विश्वासघात भी और रहस्य भी। यही संतुलन सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत बना था। और हर मोड़ पर कहानी में एक नया सवाल खड़ा होता था और अंत तक दर्शक अनुमान लगाने पर मजबूर रहते थे कि आखिर इसकी एंडिंग क्या है। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपका एंड बोल करके यहाँ पे मजाक किरकिरा नहीं करूंगी, आप जरूर ये फिल्म देखें। और इसकी सबसे दिलचस्प बात आपको पता क्या है कि इसकी प्रेरणा पंजाब की एक वास्तविक घटना से ली गई थी जिसे बाद में पटकथा का रूप दिया गया था। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और दूसरे गाने की।

मस्तानू और हेमा सरगुसाई की आवाज में आप ये गाना सुन रहे थे फिफ्थ सोल्जर। देखिए दिल तो आप हमारा ले लेते हैं आपकी बातों से, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप लोग कैसे लिख देते हैं भाई, हमें तो

फांसी नहीं होता। और इतनी सारी जानकारी आपके पास में कहाँ से आती है? अच्छा बताइए तो, देखिए हमारे सबकाने सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से और लिख रहे हैं कि इन्हें आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो, शुक्रिया। और इन्हें आज की फिल्म के बारे में पता चल गया है और सोल्जर की बात लिखी है, शुक्रिया बहुत सारी, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। फिर ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अमीराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और फिर है पहाड़गंज मुल्तानी थाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और फिर है हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया। तो ये हमें कौन प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं? ये भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। फिर है भवरपुर बसना से आदिश्याम देवांगन, गोविंदा, अक्षय कुमार देवांगन। और ये है हमारे साथ हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। फिर है हमारे साथ पीएस नवाकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फिर है मलकापुर से नारायण इंगली, सोपान तायरे, आशीष मुरियकर, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लगा है उसके लिए धन्यवाद। ये कौन है? ये है बसंत कुमार सिन्हा जी है। और ये देखिए ये फिल्म ना एक ही फिल्म से है तो इसमें मैं तो आपको सोल्जर के गाने सुनाऊंगी, तो आप कृपा करके आज फरमाइशी, ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, तो आप फरमाइशी के लिए हमारा सुबह 10:10 पे प्रोग्राम होता है उसमें आप जरूर अपनी फरमाइश भेजिएगा। और ये हमारे साथ और कौन है? ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ठिंगिया, नमन ठिंगिया, अपार ठिंगिया, शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे हैं अगेन सोल्जर के ही, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ना प्रीति जिंटा और बॉबी देओल दोनों मुख्य किरदारों में थे। बरसात और गुप्त जैसी फिल्मों के बाद सोल्जर ने बॉबी देओल को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत सफलता दिलाई। और आज भी बॉबी देओल के यादगार किरदारों की बात होती है तो सोल्जर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और रही ये बात प्रीति जिंटा की, तो ये फिल्म उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और आपको बता दें सोल्जर उनकी पहली साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले कौन सी हुई थी? मणि रत्नम की दिल से। इसके बावजूद मुख्य अभिनेत्री के रूप में सोल्जर ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई। उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, आत्मविश्वास और स्वाभाविक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी वर्ष जब दिल से और सोल्जर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था। और यही बात देखिये, किसी भी फिल्म का जो संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है ना, तो इस फिल्म की आत्मा थी अनु मलिक का संगीत। अनु मलिक ने इस फिल्म में रोमांस, लोकधुन और आधुनिक संगीत का एक ऐसा संगम रचा कि पूरा संगीत एल्बम वर्ष 1998 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में शामिल हुआ। गाने हैं जैसे सोल्जर सोल्जर, तेरा रंग बल्ले बल्ले, महफिल में बार बार, हम तो दिल चाहे तुम्हारा और मेरे ख्वाबों में जो आए, जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितने उस समय थे। गीतकार समीर ने बेहद सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाले बोल लिखे और कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, जसविंदर नरूला और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाजों से इन गानों को यादगार बनाया।

0: निगम को आप सुन रहे हैं और फिल्म सुलझे। आपको बस चलते चलते इतना बता दूं कि इस फिल्म की जो लोकेशन थी वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने सोल्जर को एक बहुत ही अलग सी एक सनिक खूबसूरती दी। और इस समय उस समय विदेशी लोकेशन पर इतनी व्यापक शूटिंग बहुत आम बात नहीं थी, तो बस दर्शकों को वो चीज बहुत अच्छी लगी। और 1998 में ये फिल्म बनी थी महज 8.5 करोड़ रुपए में, लेकिन इसने 39 करोड़ रुपए का कारोबार किया और ये उस समय की सफल फिल्मों में शामिल रही। पुरस्कारों की बात करें तो 44th जी हाँ फिल्मफेयर पुरस्कारों में सोल्जर को 5 श्रेणियों में नामांकन मिला। फिल्म ने 2 पुरस्कार अपने नाम किए, टीटी जिंटा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री और दिवंगत अकबर बख्शी को सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये था हमारे और आपके साथ आज हमने बात की फिल्म सोल्जर की। समय की कमी की वजह से बहुत से गाने आपको और भी नहीं सुना पाए, इसके लिए हम आपसे सच्ची माफी चाहेंगे। बस आपको बता दूं कि आपका साथ हमारे लिए हमेशा बहुत मायने रखता है, तो आपके नाम आपको बता देती हूँ। ये है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खरसी और विनोद खरसी। फिर है हमारे साथ कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत कौर, किरत राहुल और ये है गुरशब्द सिंह राहुल। फिर हमारे साथ है हमारे साथ और भी हमारे दोस्त हैं, ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी तामुरिया, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता है इनका मास्टर अल कबीर। और समझील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राधव गुप्ता। फिर है एक्ट्रेस टीटी जिंटा की फिल्म सोल्जर में लीड वाली सफल फिल्म थी, जी हाँ ये हमें लिख रहे हैं डीबी राणा नेहरू बिहार से। और हमारे साथ हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये कौन है, बसंत कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, श्रीमती रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी गुप्ता और इन्हें भी ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। फिर ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये सफर आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर सुनाने के साथ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले पंजाबी में फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाम मैं सरबजीत कौर, पहला बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के बीच सालाना शिखर सम्मेलन पत्रिका गलबात नवी

रहा है जो गिरदा सुरक्षा मोर्चे की नींव बना रही है। सलाना की अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं के पहले

तीयामतनाल तापमान विच भारी गिरावट 7 जुलाई तक तिना थावां ते भारी मींह पैण दा येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच अपने जापानी हमदर्द आने ताकोइची नाल सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात कर रहे ने। यह शिखर सम्मेलन दोवां धिरां नूं समुच्चे दवल्ले सहयोग की समीक्षा करन अते उन्हां नूं मजबूत बनाउण दे नाल नाल

पहुंच गई नीचे। आज पहला राष्ट्रपति पब्लिक के प्रधानमंत्री डॉक्टर जी का रस्मी स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापानी प्रधानमंत्री कल शाम भारत के तीन दिन दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर जी का भारत का पहला अधिकारिक दौरा है।

रहसर जख्मियों नु इलाज लिए हस्पताल च दाखिल कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ते खान मालिका दी भाल कर रही है। मृतक बिहार मध्य प्रदेश ते उत्तरी कर्नाटक दे वसनीक सन। कर्नाटक दे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना ते दुख प्रगट किया ते खान मालिका विरुद्ध ढुकवी कार्रवाई के निर्देश दिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु विच एक पत्थर की खान विच वापरे हादसे कारण हुए जानी नुकसान ते सोग प्रगट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने जख्मियों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की थी। सरकार ने साबका फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी बारे सोशल मीडिया से फैल रहे एक वीडियो में जारी दसा है। यह पाकिस्तानी खातों तो प्रसारित किया जा रहा है। वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि जनरल द्विवेदी ने विरोध में अस्तीफा दे दिया और जनरल तीरथ सेठ ने कमान सौंप दी। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्यों की जांच पर इकाई ने कहा कि यह वीडियो एआई नाल तैयार किया गया एक डीप फेक है जिसमें दुर्प्रचार ने जनता को गुमराह करने लिए तैयार किया गया। इकाई ने स्पष्ट किया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अजिहा कोई बयान नहीं दिता। इकाई ने यह भी कहा कि फौज मुखी की नवी जिम्मेदारी जनरल द्विवेदी ने उन्होंने सेवा मुक्ति तो बाद स्थापित प्रक्रियावां के अनुसार दिखी गई है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच मानसून के जल्दी आने नाल वत्त-वत्त तापमान विच भारी गिरावट आई है जिस नाल लोगों नूं गर्मी तो काफी राहत मिली है। गोवा राजा ते केंद्र शासित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों विच देर रात और सवेरे मीह पैण नाल बिजली की मांग विच भी भारी गिरावट दर्ज की गई। तापमान विच गिरावट के नाल हरियाणा का नरनौल इस खेत्र का सब तो ठंडा शहर है जिथे असवेरे घट्टो घट तापमान 18 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। इस तो बाद पंजाब के बठिंडा च घट्टो घट तापमान 20.8 डिग्री सैल्सियस रहा। कल बठिंडा विच वध तो वध तापमान 41.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ विच घट्टो घट तापमान 24.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने अज तो 7 जुलाई तक पंजाब ते हरियाणा के नाल नाल चंडीगढ़ विच कई थावां ते गरज चमक नाल भारी मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी किया है। आखिर खास खबरां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जापान के प्रधानमंत्री सानो ताकायुची दरमियान सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात नवी दिल्ली में जारी कई समझौतों के दस्तखत होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि सरकार विकास में स्थिरता नाल संतुलित करने वाली नीतियां राही चौगिरदा सुरक्षा में यकीनी बना रही है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6 बजे भी

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सराई ताकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिदायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे

0: storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kyiv as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also entered round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमरीका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसने बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं करें, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवास

0: प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सौंपा। राज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार 2रे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह के शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी क्लेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकेंड।
1: दूसरे कमरे में जाइए, अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले, हम ले जाएंगे, लगा दीजिए, बन जाएंगे। आपने कहा एक लाइन भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
3: हुआ पापा?
2: वो बोलता ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और ये जो समय है ये समय है एक ऐसे कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज के जो कलाकार हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस एक गाने की झलक आपके सामने रख रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन से हमारे आज के कलाकार हैं।

जी, तो आपने अनुमान लगाया हमारे आज के कलाकार कौन है? पहला जो जवाब हमारे जहन में आता है वो किसका आता है? अनिल कपूर। नहीं जी, जैकी श्रॉफ? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कौन होगा? देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ कौन है हमारे आज के कलाकार। और बताऊँ आपको, पहली जो हमारे पास में ईमेल आई है वो भी इसी जवाब के साथ आई है। जी हाँ, वो है हमारे साथ में प्रकाश वर्मा जी, लिख रहे हैं कि आज के कलाकार है अनिल कपूर। नहीं प्रकाश जी, मैं आपको बता रही हूँ आज के हमारे कलाकार कौन है। तो देखिये, हिन्दी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जिन्हें सुनते ही बरसों पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ये आवाजें केवल गीत नहीं गाती बल्कि एक पूरे दौर की धड़कन जाती है। ऐसी ही एक दमदार, बुलंद और दिल छूने वाली आवाज किसकी थी? देखिए, वो आवाज थी मोहम्मद अजीज की। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे उस फनकार को जिसने अपने शुरू से 80 और 90 के दशक के संगीत को नई ऊंचाइयां दी। तो अब आप समझ गए हमारे आज के कलाकार कौन है। जी हाँ, आज के कलाकार है मोहम्मद अजीज। और आज का ये जो सफर आप तय करेंगे, वो आप तय करेंगे मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ।

0: वही गाना सुनते ही बस हमारे सामने उस शख्स की छवि उभर जाती है जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। इनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ। उनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। महान गायक मोहम्मद रफी उनके आदर्श थे और शायद यही कारण था कि उनकी गायकी में रफी साहब की मिठास और अपनी अलग बुलंद आवाज का अनोखा संगम सुनाई देता है। दोस्तों यहाँ पर ना मैं आपको उनके एक उस गीत को याद दिलाना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने आदर्श अपने आइडल जिया मोहम्मद रफी की याद में गाया था और वो जो गाना था वो बकायदा मोहम्मद रफी साहब की याद में ही था। तो वो गाने की झलक मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके भी मन में उनके कौन कौन से गानों के लेकर की क्या क्या यादें हैं, तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो ये सुनते हैं फिल्म क्रोध का ये गाना।
1: फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद।

जी हाँ, तो इस गाने को आपने सुना और ये उन्होंने अपने आदर्श मोहम्मद रफी के लिए गाया था। और हमारे आज के कलाकार मोहम्मद अजीज के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने ना कोलकाता में कई वर्षों तक मंच पर गाना गाया। बंगाली फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिले, लेकिन हर कलाकार की तरह उनका सपना भी मुंबई तक पहुंचने का था। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुंबई आने के बाद ना मोहम्मद अजीज की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। संगीतकारों ने उनकी आवाज की ताकत को पहचाना, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई वह थी 1985 की सुपरहिट फिल्म मर्द। और गाना कौन सा था बताइए? जी हाँ, यही वाला।

वाला है मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन का मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला, वो मर्द

देखिए ये जो मर्द टांगे वाला है ये हमारे आज के कलाकार है मोहम्मद अजीज और आप लोगों ने कितनी खूबसूरत बातें इनके लिए लिखी है तो वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। देखिए ये लिखते हैं प्रेम सागर शुभलता रोहित सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से वी विश हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद अजीज वी आर एंजॉइंग द प्रोग्राम थैंक यू सो मच। और ये लिख रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु फिल्म अच्छा नहीं देखिए सर ये कार्यक्रम हम आपको फिर बता दें फरमाइशी नहीं है इसमें हम कलाकारों की बात करेंगे और आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और इनकी जानकारी और गीत अच्छे लग रहे हैं। कौन लिख रहा है वीरमगाम जंक्शन से अजित कुमार भावसर प्रमीला बेन भावसर। फिर है हमारे साथ ये है ग्राम रजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जयहिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त जुड़े हैं ये है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरी दिनेश प्रसाद लहरी कालिंदरी लहरी। और ये है हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से और इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया है कि सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। और ये लिख रहे हैं तुलसी मस्कीन जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनके साथ मीना मस्कीन चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशव रिधान खुराना और मोहम्मद अजीज जी के जन्मदिन पर उनके गाए गीत और जानकारी अच्छी लग रही है लवली सॉन्ग से आगाज आपके आ जाने से। जी हाँ देखिए वो गाना तो इनका बहुत ही बेहतरीन गाना है। और ये और हमारे साथ कौन है संबलपुर काकेर से फागू राम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है शुक्रिया। हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी सितार गीता गांव नधाना पंजाब से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीज साहब की तो 80 का जो दशक था वो हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। एक और जहाँ एक और किशोर कुमार का जादू था तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के गायक अपनी पहचान बना रहे थे। इन्हीं के बीच मोहम्मद अजीज ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी पप्पू लाहिड़ी अनु मलिक आनंद मिलिंद जैसे लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती अनिल कपूर सनी देओल हो या गोविंदा हर बड़े अभिनेता पर इनकी आवाज खूब जची। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। न सिर्फ गीत नहीं गाते थे ये पर्दे पर दिख रहे किरदार की आवाज बन जाते थे और एक ऐसे ही किरदार था किसका खुदा गवाह में किसका अमिताभ बच्चन का। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत।

गाने आपको पसंद आ रहे हैं यकीन मानिए, वो भी हमने बहुत दिल से चुने हैं हमारे आज के कलाकार के गाने, क्योंकि उनकी गायकी की जो बात है ना वो उनके अलग अलग गानों में आपको नजर आएगी। ये जो गाना आप सुन रहे थे इसमें उनका साथ दिया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और देखिए हमारे साथ ना हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, खूब प्यारी प्यारी बातें लिख रही है। तो देखिये फिल्म खुदा का जो गाना है इसके बारे में लिख रहे हैं ज्योति मक्कर, संदीप मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। फिर हमारे साथ ये हैं हमारे दोस्त जिन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया गाने हैं, शुक्रिया। मोहम्मद अजीज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं राधा कृष्ण, नवल किशोर, शुभलता, मधु, प्रेम सागर, और ये है खजाना गीत अमृतसर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ दूसरे दोस्त हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया और पोता है इनका मास्टर अल कबीर। प्रस्तुतकर्ता सोनाली जी को सप्रेम नमस्कार करते हैं, आपकी आवाज बहुत मीठी है, शुक्रिया शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ दांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। फिर हमारे साथ ही संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। आप हमारे सिंह बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। सुदर्शन मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी, सोनीपत से। और ये भी मोहम्मद अजीज साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, भाई आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये लिख रहे हैं मालहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी। और इसके साथ ही हमारे साथ पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगली, सुपान ताड़ी, आशीष मुहेकर, और इन्हें मोहम्मद अजीज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्कीन जी, लेकिन ये होस्ट एडम सोनाली जी, गुड आफ्टरनून। आज के एक ही कलाकार में मोहम्मद अजीज के बारे में अच्छी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, पेश के ऊपर शुक्रिया। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रविता खुराना, केशव खुराना, प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, आप कहाँ छूटेंगे हमसे। और ये लिख रहे हैं कौन, ये है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अमीरा सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। फिर हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है इसहाक मोहम्मद साहब। और आज के हमसफर में हम भी हैं आपके हमसफर, बिल्कुल आप भी हमारे हमसफर हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आसिम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। देखिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए, अनिल मोहन जी हैं, उषा मोहन चिल्ले नायक, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब की। अब देखिए मोहम्मद अजीज की गायकी की एक और विशेषता थी उनके ऊंचे सुर पर सहज पकड़।

चाहे देशभक्ति का गीत हो या रोमांटिक धुन हो, उत्सव का माहौल हो, उनकी आवाज हर रंग में ढल जाती थी। यही कारण है कि उनके गाय गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्म आवारगी का एक गीत जिसने उनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने।

और सुन रहे हैं गाना फिल्म आवारगी से और इस फिल्म का साथ दिया लता मंगेशकर ने और हमारे साथ आप लोग दे रहे हैं लगातार कौन है हमारे साथ विवेक है गांव फिरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और इन्हें प्रोग्राम में जानकारी अच्छी लग रही है धन्यवाद। फिर कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आपने बेहतरीन बातें बताई। देखिये धर्मेंद्र जी यहाँ पर आज मैं बाजी मार गई ना आज आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी लेकिन थैंक यू आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए। आप धर्मेंद्र जी पर कपिल जी पर पूजा परिहार और हमारे साथ हैं नाजी मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू और फिर हमारे साथ कौन है जी ये मोहम्मद अजीज साहब के जी के सभी सॉन्ग सिलेक्शन जबरदस्त लाजवाब है आपकी आवाज अच्छी है शुक्रिया। ये कौन लिख रहा है अमर रमेश कुमार खत्री टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री मोहम्मद अमीन सफर सादिक शेख शंकर गुल शर्मा चानेसर गोट कराची से शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए अब हम कार्यक्रम में उस जगह पर आ गए हैं कि अब हम आपके साथ और ज्यादा बातें नहीं साझा कर पाएंगे बस लेकिन चलते चलते ना मैं आपको इतना बता दूं कि इस कलाकार को हमने 4 दिसंबर 2018 को खो दिया। मोहम्मद अजीज दुनिया से विदा हो गए लेकिन कलाकार कभी भी विदा नहीं होते हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और बस आपको इतना बता दूं चलते चलते उनके एक गाने के साथ आपको छोड़ रही हूं और ये गाना भी बहुत अच्छा है बहुत अलग सा है आप ये सुनिए और आगे निकलते हैं फिर और मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए आपके रेडियो हम सफर सुनाली इजाजत चाहूंगी नमस्कार।

अब से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नखमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। सुपहर 3:30 हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाजे नजर। मौजू है रेडियो सहाफत और उर्दू।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाए तकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत एआई, इक्तसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तावन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल की। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आजादाना और खुले भारत बहरुलकाहिल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान ताउन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जावे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज की अक़्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निमटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़्वामे मुत्तहदा के नए जायजा मीटिंग के दौरान

इस नक्मे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नजर। मौजू है रेडियो सहाफत और उर्दू।

0: बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े शायर और अदीब रेडियो से वाबस्ता थे, तो उर्दू का रेडियो से जो ताल्लुक रहा है उसकी एक बड़ी हसीन हिस्ट्री है और ताल्लुक है, और उसको अगर आप गौर से देखें
1: जी,
0: तो उर्दू ने रेडियो को और रेडियो ने उर्दू को
1: काफी
0: फरोग देने में
1: किया है,
0: काफी अहम किरदार अदा किया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब के, आपने ये बहुत सारी बातें बताई। कुमार साहब, आप न्यूज से वाबस्ता रहे हैं, बीबीसी से, और जो भी हिंदुस्तान में मॉडल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है वो एक बीबीसी की तर्ज पर ही आज भी इसी ढंग पे हम चल रहे हैं। काफी तब्दीलियां आई हैं कंटेंट के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से, है ना। तो ये जो खबरें ब्रॉडकास्ट होती थी आजादी से पहले, है ना, हिंदुस्तानी में, जैसे मैं टाइम बता दूं कि रेडियो में हिंदुस्तानी में जो खबरें ब्रॉडकास्ट होती थी वो दिल्ली स्टेशन से 8:50 पर होती थी या 13:50 पर होती थी। तो ये क्या फर्क था, क्यों वो लोग हिंदुस्तानी को ज्यादा प्रीफर करते थे ब्रॉडकास्ट करने में, ना हिंदी का नाम होता था ना उर्दू का नाम होता था।
2: देखिये, शुक्रिया, आपने बीबीसी का जिक्र किया, तो चूंकि मैंने 12-14 साल वहां काम किया है तो थोड़ा सा उसकी तारीख से भी वाकिफ हूं। हमें जब मैं पहली मरतबा गया तो बताया गया था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में हिंदुस्तानी सर्विस शुरू की गई थी उन हिंदुस्तानी फौजियों के लिए जो कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से
1: एम्पायर सर्विस के नाम से
2: लड़ रहे थे
1: जी।
2: और जुल्फिकार अली बुखारी
1: जी,
2: जो कि पहले यहां स्टेशन डायरेक्टर थे और उनके बड़े भाई पतरस बुखारी, बड़े मशहूर शख्सियत, बल्कि दोनों को बीबीसी कहा जाता था, बुखारी ब्रदर्स का ऑपरेशन, और जुल्फिकार बुखारी साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मकसद ये था कि जो फौजी हैं उनकी खैरियत उनके घरों तक पहुंच जाए और उनकी फरमाइशें और उसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी खबरें। और जब तक तकसीम नहीं हुआ था मुल्क तो वहां हिंदुस्तानी सर्विस काम करती थी, और उसके बाद जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो वो फिर इंडियन सेक्शन और पाकिस्तानी सेक्शन बन गया, और फिर बाद में उसको हिंदी सर्विस और उर्दू सर्विस का नाम दिया गया। तो इस लिहाज से अच्छा, दूसरा बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो का रिश्ता ऐसा रहा है कि अभी कुछ वर्षों पहले तक यहां काम करने वाले प्रोड्यूसर्स जो थे वो सेकेंड हैंड पर जाते थे, उनको ले लिया जाता था 2-4 साल के लिए जाते थे, और उनमें से काफी लोग वहीं पर जम हो जाते थे बीबीसी में, वहीं से रिटायर होते थे और आजकल लंदन में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी जिसको कहते हैं रोशन बाब है उर्दू हिंदी सहाफत में भी और रेडियो में भी, कि जो हिंदुस्तानी सर्विस थी उससे हिंदी और उर्दू सर्विसेज में के बाद में लोगों को उससे फैस पहुंचा
1: जी। तो ये हिंदुस्तानी की क्या खूबी थी, किस लिए से हिंदुस्तानी कहलाती थी, क्या उर्दू इसके मुतामिल नहीं थी?
2: देखिए, जो हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी जबान पर जोर दिया
1: जी,
2: हालांकि उन्होंने खुद उर्दू पढ़ना और लिखना सीख लिया था, लेकिन वो इस बात पे जोर देते थे कि भाई रस्मुलखत चाहे वो देवनागरी हो या फारसी हो, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं आम फहम की जबान में जो हर आदमी समझ सके, खास करके नॉर्थ इंडिया का। और जो हमारे पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी तो मादरी जबान उर्दू थी और वो खुद उर्दू में काम करते थे, और कई बार उनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत भी होती थी
1: जी।
2: लेकिन उनका भी जोर इसी बात पर रहता था कि हिंदुस्तानी में बात की जाए तो ताकि ज्यादा लोग उसको समझ सकें। अब जो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी के अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल आप करेंगे तो वो भी कम्युनिकेशन की थ्योरी के मुताबिक आम आदमी उसे नहीं समझ पाएगा। ये है कि आप अगर बहुत ही सलीस उर्दू में बात करेंगे तो वो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सड़क का पे खड़ा हुआ आदमी है, करखंदार है, जो किसान है, वो भी समझ ले कि क्या नशरियात हो रही है और इसमें खबर क्या है, वो उसकी समझ में आ जाए, ये मकसद होना चाहिए, और यही मकसद था हिंदुस्तानी जबान के इस्तेमाल का।
1: तो एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी स्पोकन वर्ड से बहुत करीब रहा है,
2: यकीनन, क्योंकि वो हिंदुस्तानी क्या है, हिंदुस्तानी कोई जबान नहीं है, वो मिक्सचर ही है हिंदी और उर्दू का, और उसमें अंग्रेजी के अल्फाज काफी बड़ी तादाद में आ गए हैं। तो अब टिकट है, कंप्यूटर है, रेडियो है, इसकी क्या आप ना हिंदी कर सकते हैं ना उर्दू कर सकते हैं, तो ये हिंदुस्तान उस हिंदुस्तानी का हिस्सा बन गए हैं जो आम फहम आम बोलचाल की जबान है।
1: आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं जनाब जावेद रहमानी साहब। जावेद रहमानी साहब का एक तजर्बा है

0: इन चीजों से होकर के वो यहां तक पहुंची है। एक जमाने में जब हम खबरें सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो की, तो उसमें देखिए एक लबो लहजे का बड़ा फर्क था
1: जी।
0: जो लोग खबरें पढ़ते थे उनकी, मतलब बहुत सारे लोग तो इसीलिए खबरें सुनते थे कि यार फला आदमी का लहजा बड़ा शानदार है, उनको खबरों से ज्यादा अच्छा लगता था
1: लहजा।
0: हमारे एक अजीज थे मुरादाबाद में, मैंने ये देखा कि वो अखबार पढ़ते थे और रेडियो के अंदाज में तो मैं सुबह को ये देखता था कि वो एक अलजमियत अखबार आता था वहां, तो वो एक होटल पे चाय पीने जाते थे, चाय वाला उनको फ्री चाय पिलाता था क्योंकि 50 आदमी उनकी वजह से उसके पास चाय पीना आ जाते थे
2: खबरें सुनने के।
0: मुक्तदा खान जो है वो खबरें इस वक्त शुरू हो रही
1: है, रेडियो काम कर रहे हैं वो।
0: तो मैंने सुना अपने बचपन में, मैं देरी 10-15 साल की उम्र थी, क्या गजब के अगर वो यहाँ आ जाते ऑल इंडिया रेडियो में तो बेहतरीन
2: ब्रॉडकास्टर
0: होते और इसी अंदाज में वो तकरीर भी करते थे। तो रेडियो ने एक लबो लहजे को लोगों के तब्दील किया।
1: नाम याद है बचपन में कभी किसी की खबरें सुनी उर्दू की?
0: भाई बहुत सारे लोग, मैं एक मुस्तफा अली अकबर हुआ करते थे,
1: मुस्तफा अली अकबर थे,
0: और आपके
1: अब्दुल अली खान की खबरें सुनाई,
0: अली खान थे,
1: अशरफ आबदी से खबरें सुनाई,
0: अशरफ आबदी,
1: समीम रिजवी से सुनी।
0: जी जी जी। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब मैंने मतलब 40-45 बरस पहले जब मैं आवाज में आया था, तो ये एक कहकशा थी रेडियो जो था, और इसमें जो उर्दू सर्विस का दफ्तर था और उर्दू मजलिस का, मतलब रफत सरोज साहब उर्दू मजलिस का जब प्रोग्राम पेश करते थे तो उनकी आवाज जो थी एक सिंबल बन गई थी।
1: तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उर्दू न्यूज में से वाबस्ता लोगों को भी याद करें, और साथ ही साथ उन्होंने जो जबान के हवाले से हम तक एक रवायत को पहुंचाया है, हम उसे भी याद करें। कुरबान अली साहब, आप जैसा ये बताना चाहेंगे हमें कि किस तरह रेडियो ने जबान के हवाले से अलग अलग इलाके की कुछ न कुछ माहौले होते हैं, कुछ लहजे होते हैं, तो क्या इन चीजों को एक में इंसानियत की तलाश रेडियो में होनी चाहिए, या हर इलाके अपने लबो लहजे के लिहाज से उर्दू में खबरें ब्रॉडकास्ट करे? बीबीसी के अपना एक लबो लहजा है और एक अपना सेटअप है कि किस तरह हमें कौन सी जबान बोलनी। जैसा कि अगर पंजाबी से रिलेटेड, पंजाबी के एरिया में अगर उर्दू का ब्रॉडकास्ट जा रहा है, जैसे बीबीसी जो मैंने सुना है और दूसरे रेडियो स्टेशन के, पानी खड़ा है, हालांकि हम दिल्ली वाले या लखनऊ वाले कभी पानी को खड़ा नहीं कह सकते, तो क्या इस तरह के इलाकाई असरात भी उर्दू न्यूज पर पड़े हैं?
2: जी, आमतौर पे तो होता यह है कि चूंकि खबरों को बहुत ही सीरियसली लिया गया, कभी उसमें वहां इजाजत नहीं दी गई कि किसी तरह की छेड़छाड़ जबान के साथ की जाए या किसी तरह का लिबर्टी नहीं ले सकते। तो आमतौर पे बहुत ही सीरियस अंदाज में, बहुत ही संजीदा तरीके से न्यूज रीडर या प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स के होते थे वो उसमें करते थे। लेकिन उसके बावजूद देखिए, सिर्फ सहाफत वही नहीं है कि जो खबर और करंट अफेयर्स, इसके अलावा और भी दूसरे कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जो बहुत संजीदा मैसेज देते हैं या खबर देने का भी काम
1: करती है,
2: कमेंट्री है। उसके अलावा उर्दू सर्विस के, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम होता था तामील इरशाद, बड़ा मशहूर, और उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। हमारे दोस्त थे महमूद हाशमी साहब, यहीं पे वो करते थे ये प्रोग्राम, और 1983 में इन्होंने लाइन सबमिट हुआ था, जियाउल हक साहब आए,
1: इंटरव्यू किया था,
2: महमूद हाशमी साहब मिले उनसे विज्ञान भवन में, कहा कि मैं महमूद हाशमी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तामील इरशाद वाले, यानी पाकिस्तान का सदर, और उसके पीछे, इस तारुफ के पीछे मकसद था कि उनसे इंटरव्यू लेना, जो कि इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आ जाइए सुबह, और वो हुआ। उसी तरह से आवाज दे कहां है, एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम
1: जब्बार
2: उर्दू सर्विस का होता था, और उसमें आप ये कहें कि चाहे वो अपने दोस्तों की बात होती थी, अपने वतन की बात होती थी, अपनी कल्चर की बात होती थी, लेकिन उसके जरिए से वो भी एक तरह की, मैं मानता हूं, सहाफत थी कि उसमें बहुत ही संजीदा गुफ्तगू होती थी, और उसमें चूंकि पार्टीशन हुआ था, लोग इधर से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे, करोड़ों लोग, तो उन तक बातचीत पहुंचती थी। असल चीज क्या है, खबर का मकसद क्या है, कम्युनिकेट करना
1: जी,
2: गुफ्तगू करना जी। और वो जिस तरह से, जैसा मासूम भाई ने कहा कि अगर आम फहम जबान में हो, अगर जो जबान आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सुर्खियां अभी शुरू में बताई
1: जी,
2: तो वो तो आम आदमी के सर से उड़ जाएंगी, और वो भी उस जमाने में रेडियो घर घर करता था, शॉर्ट वेव पे होता था, तो उसको सुनना भी एक अपनी मशक्कत करनी पड़ती थी, खास करके बीबीसी सुनने के लिए। तो उसमें अगर आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि जो बहुत सख्त हो या जिसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़े, तो वो फिर वो ब्रॉडकास्ट जो है वो सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए हो सकता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए हो सकता है।
1: मेरा सवाल ये था कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू न्यूज ब्रॉडकास्ट का दामन बहुत वसी है,

0: अब मैं अगर बताऊं कि कहां कहां से ये ब्रॉडकास्ट होता था तो शायद आपको बात समझ में आएगी। दिल्ली में हो रही है, इसके बाद एक मरकज लखनऊ है, लखनऊ के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हैदराबाद है। तो इन तमाम इलाकों से जो खबरें उर्दू की ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, तो कश्मीर में कुछ वोकैबुलरी अलग है।
1: जी यकीनन,
0: है ना, हैदराबाद में ठप्पा घर डाकघर को हम लिखते हैं और वहां लोग समझते हैं। तो इससे क्या उर्दू जबान में एक तरह की इंसानियत पैदा या कुछ हिंड्रेंस पैदा होती है?
1: मेरे ख्याल में नहीं, ये भी खूबी है। और देखिए, किसी भी जबान की खूबी है कि वो दूसरी जबानों को जम करे अपने आप में, जो कि हिंदी ने काफी हद तक इसमें किया है। और इसलिए जो पिछले 90 साल का की एक तारीख है इंडिया रेडियो की, और खास करके उर्दू सहाफत, उर्दू ब्रॉडकास्टिंग की, वो उसमें ये आपको लबो लहजा मिलेगा। हैदराबादी लबो लहजा भी मिलेगा, लखनवी लबो लहजा भी मिलेगा, कश्मीरी लबो लहजा भी मिलेगा, और दिल्ली वालों का भी मिलेगा। और दिल्ली की जो अपनी टकसाली जबान है वो भी बहुत सारे प्रोग्रामों में सुनाई दी, जो कि न्यूज और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भले ही ना हो, लेकिन वो एक तरह से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, और उनमें वो चीजें, वो जुमले, वो मुहावरे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो सुनने को मिल जाते।
0: तो अभी जिन खबरों की बात कर रहे थे, जिन लबो लहजे की बात कर रहे हैं, जिन तहजीबी कदों के साथ खबरें पड़ी जाती हैं, आइए कुछ नाम उनके बारे में जान लेते हैं, ताकि हमारे जहन में हमारे सुनने वालों को पता चले कि कैसे कैसे लोग थे। जैसे आजादी से पहले लाहौर रेडियो से मुस्तफा अली हमदानी, सईदा बानो हिंदुस्तान से,
2: बहुत बड़ा
0: सईदा बानो हिंदुस्तान की एक ऐसी लेडी है जिन्होंने 13 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो में ज्वाइनिंग की थी, और इसकी खबर उस वक्त भी हिंदू में छपी थी। अब सईदा बानो के हवाले से मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, और सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहूंगा कि पूरे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग की तारीख में ये पहली खातून है जिनको ऑल इंडिया रेडियो ने अपॉइंट किया था।
1: जी हाँ,
0: हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट में अगर ऑल इंडिया रेडियो में सिर्फ हम म्यूजिशियन को बाहर कर दें, जो खवातीन हमारे यहां म्यूजिक से दिलचस्पी रखती हैं, उनको अलग हटा दें, तो हमारे यहां खवातीन की, उर्दू जानने वालों की एक बड़ी तादाद मिलती है जिन्होंने खबरें भी पढ़ी हैं, जिन्होंने ड्रामे लिखे, ड्रामे प्रोड्यूस किए, फीचर्स बनाए। तो रेडियो ने किस तरह औरतों को एम्पावर किया है रेडियो न्यूज के हवाले से भी, उन्हें देखिए नाम तो सईदा बानो से लेकर रेहाना फरीदी, मदब्बरा उस्मानी, ये सब खवातीन थी जिन्होंने खबरें पढ़ी। इसके बाद एक नस्ल वो देखी मैंने जो यहां से खबरें पढ़ते हुए, उनमें जाहिद अली खां, मुस्तफा अली अकबर का नाम आपने लिया, असद जाफरी से आप वाकिफ हैं, शमीम रिजवी थे, सलीम अख्तर थे, रेहाना फरीदी, मदब्बरा उस्मानी भी थी, तमीजुद्दीन साहब का नाम आपने लिया, शमीम अहमद, और एक अहम मरकज श्रीनगर होता था हमारा जहां से खबरें ब्रॉडकास्ट होती थी। ये नशरियात का ये अदारा 1948 में बना था। वहां कुलदीप राणा नाम के एक बहुत ही अच्छे उर्दू के ब्रॉडकास्टर थे और खबरें पढ़ा करते थे। और खबरों के हवाले से सिर्फ एक बात और शेयर कर देना चाहती हूँ कि अवैध दौर में हमारे यहाँ न्यूज कास्टर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बस हम हायर करते थे एक अनाउंसर और उससे कहते थे ये खबरें आप पढ़ दीजिए।
1: और यहां मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारे मुल्क के एक वजीर आजम हुए हैं जो बीबीसी में ब्रॉडकास्टर थे और ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर भी काम किया, इंदर कुमार गुजराल। और इंदर कुमार गुजराल साहब ने मुझे बताया कि उनका रेडियो से बड़ा ताल्लुक रहा, और दिलचस्प बात यह है कि वो वजीर आजम तो बहुत बाद में बने, उससे पहले वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पहले हुए। और तो ये एक ऐसा सफर रहा है ब्रॉडकास्टर्स का कि उसमें कई बड़े नाम, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, ये स्टेज के बहुत सारे लोग हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो और उसकी उर्दू सर्विसेज के साथ उनकी
0: वाबस्तगी रही है, खासतौर से ड्रामे से वाबस्तगी रही है। बस आखिर में एक दो सवाल के बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि एक तमाम गुफ्तगू के बाद ये जहन में बात आ रही कि क्या उर्दू रेडियो ब्रॉडकास्ट आज के दौर में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बरकरार रख सकती है?
1: यकीनन, देखिए एक बड़ा अच्छा माजी रहा है जिसका हम जश्न भी मना रहे हैं, 90 साल का जो ये अरसा है, 10 साल बाद सेंचुरी हो जाएगी, मामूली चीज नहीं होती है, और उसको याद रखने वाले लोग आपको अभी भी मिलते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये, जैसे अबीर रहमानी साहब ने कहा कि रेडियो को सुन करके, खास करके उर्दू जबान को सुन करके लोग अपना लबो लहजा दुरुस्त करते थे, तो ये सबसे बड़ा कारनामा है। और आज भी उर्दू का तो मामला ये है कि वह जहां भी बोली जाती है तो बहुत जितनी शीरी जबान में है वो शायद दूसरी किसी और जबान में नहीं है।
0: अच्छा जी, रहमानी साहब इस सिलसिले में आपको क्या रेडियो ब्रॉडकास्ट

0: न्यूज आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी में और इस बुहरानी दौर में अपनी सनात को बरकरार रख पाएगी?
1: नहीं नहीं बिल्कुल रेडियो सहाफत बिल्कुल रख पाएगी और बल्कि मुझे लगता है कि अब बहुत मजबूती के साथ रखा जाएगा। उसकी वजह है कि हमें तकनीक का भी सहारा मिल जाता है, पहले तकनीक नहीं थे।
0: जी तकनीक से मुराद आप एआई की बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल एआई की बात कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका हमारा वो चाहता है कि इमीडिएट उसको
0: सब चीजें
1: मिल जाए।
0: तो इसी के साथ हम गुफ्तगू का ये सिलसिला खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, कि आप लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि 90 साल के इस उर्दू नशरियात में उर्दू न्यूज ने किस तरह मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए यहां तक पहुंची है और नए टेक्नोलॉजी को किस तरह हम आहंग करके अपने वजूद को बरकरार रखने और मुअसर तरीके से आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू खबरें महज खबरें नहीं थी बल्कि एक तहजीबी अलामत और उन खबरों के पढ़ने वालों की आवाजों में न सिर्फ वाकया सुनाए बल्कि एक जबान एक रवायत और एक तहजीब को जिंदा रखा है। हम इस बामानी मजाकरे के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जनाब कुर्बान अली साहब और जनाब जावेद रहमानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और आकर के इस 90 साल की तारीख में उर्दू न्यूज के बददरीज तरक्की उसके मराहल उसके मसाइल पर गुफ्तगू की और इससे हम एक नए दौर में दाखिल होंगे और इससे और बेहतर न्यूज ब्रॉडकास्ट करने और उसको मौसम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम ये मुज़ाकरा खत्म।
2: शकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
3: अंदाजे नजर अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे, मौजूद था रेडियो सहाफत और उर्दू मीडियम वेज 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटी फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आगाज मोहम्मद अजीज और एस जानकी की आवाजों में फिल्म है आखिरी रास्ता। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

खुदा गवाह फिल्म का ये दुकान आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। नगमा निगार थी अनिल बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और जब सुनिए सौदागर फिल्म का नगमा मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाजों में।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में अभी आप ये नगमा सुन रहे थे। फिल्म थी याद रखेगी दुनिया। फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द।

भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ।

गोरा के ताइया मार सके ना कोई, अरे क्या गोरा के ताइया मार सके ना कोई, अरे

गर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाब या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इनसे ज्यादा दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती। शहरी आबादी की वजारत ने ऐलान किया है कि भारत ने मुल्क की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस पिंस की मंजूरी के साथ ही एक बड़ा संग मील हासिल कर लिया है। ये पिंस सर्विस उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सरगर्मियों से मुतालिक है। पिंस के तरीकाकार में सैटेलाइट पर मबनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर चलाने की और बिल्कुल सही जगह पर उतर सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने आईएसआई के हिमायत याफ्ता बैन रियासती दहशतगर्दी और हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ एक कार्रवाई में 4 मुलजिमों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि ये लोग आईएसआई के आकाश शहजाद भाट्टी और उसके साथियों की हिदायत पर कौमी राजधानी में दहशतगर्दाना कार्रवाई का मंसूबा बना रहे थे। कार्रवाई के दौरान 2 गैर मुल्की पिस्तौल, 9 कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वेनेजुएला के अवाम ने फील्ड अस्पताल में काम करने वाली भारत की मेडिकल टीम की सताइश की है। इस अस्पताल में वहां आने वाले शदीद जलजले से मुतासर अफराद का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। भारत ने मुतासरीन की मदद की गरज से ऑपरेशन एमस्टार्ट के तहत वहां ये फील्ड अस्पताल कायम किया है। वहां जून की 24 तारीख को 7.2 और 7.5 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था जिससे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इसी दौरान वेनेजुएला के कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,295 और जख्मियों की तादाद 11,267 हो गई है। 6,461 अफराद को बचाया गया है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों ने खातून सरगर्म कारकुन की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान में खातून सरगर्म कारकुन को गिरफ्तार किया है। इंसानी हकूक से मुतालिक तंजीमों ने कहा है कि यह गिरफ्तारी पुरम कारकुनों के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाई का एक हिस्सा है और इससे पाकिस्तानी फस्ताहियत का इजहार होता है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी शोबे ने इस खातून सरगर्म कारकुन को कैच जिले में उनके घर से गिरफ्तार किया जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। यूक्रेन में रूस के रात भर के हमलों के बाद कीव में 13 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं। रूस के ड्रोन और मिसाइलों के रिहायशी इमारतों को निशाना बनाए जाने के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि शहर भर के हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। फजाई हमलों से मुतालिक सायरन भी सुनाई दे रहे थे और कई शहरियों ने मेट्रो स्टेशन में पनाह ली। रूस के ये ड्रोन और मिसाइल हमले इस हफ्ते के शुरू में यूक्रेन के मास्को पर ड्रोन हमलों के बाद किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमरीका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें इक्तसादी सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है।
जम्मू में भगवती

0: बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फीडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दिए पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हो साड़ी दूजी सभा शुरू होंदी है। सभा की शुरुआत करेया सराय के प्रोग्राम के नाल। सुनवा फरमाओ जोक माही दी।

साड़ी सेवा विच सिलाई की प्रोग्राम कुछ बाता कुछ गीत तुहाकू साड़ियां गाना ते गीत पसंद आए हो सी ते वाला सकू खाते विच लिख भेजो ते हुन हरजीत कौर को देवो इजाजत वल मिलसा।

इस पंजामा सिलसिले के थोड़े रूबरू आशा एक बार फिर हाजिर जमीन आज दे इस मजलिसे विच थोड़े लिए पेश कीते जानवा के सिलसिले इस तरह होंगे हम तो थोड़ी देर बाद हमेशा वांग समाज फरमावे आज दी गल अब दी गल तो फौरन बाद प्रोग्राम होएगा माझे दी महक उस तो उपरांत सुगम संगीत पेश किया जाएगा आज इस विच तुसी सुनोगे गुरदीप सिंह हरबंदर सहगल ते अमर नूरी होरा दी आवाज़ा ते मजलिस का आखिरी सिलसिला तमन्ना थोड़ी नजर करांगे शाम 6:25 ते।

అమరేంద్ర గిల్టే. अमरेंद्र गिलते सुनिधि चौहान की आवाज से गीत सी समीन होना पेश है थोड़े लिए प्रोग्राम मजेदी महक. मजेदी महक की गल करिए माझा पंजाब दे दिल दी धड़कन सभ्याचार इतिहास ते विरसा. पंजाब दी धरती नूं तीन मुख हिस्सों विच वंडिया जांदा है माझा मालवा ते दुआबा. इन्हां तिन्हां विचों माझा ओ खिता है जिस नूं पंजाब दी आत्मा कहा जांदा है. माझा शब्द फारसी दे मंच मंच तों बनिया है जिसका अर्थ है विचकार. ब्यास ते रावी दरियावां दे विचकार वसिया इलाका सदियां तों पंजाबी सभ्याचार बोली ते कौमी अंदोलनां दा केंद्र रहा है. गल्लां करांगे इस बारे बहुत सारियां पर गीत संगीत दे नाल नाल.

जी गल करे सी माझे दी महक दी। माझे दी महक तो विच शहीदां दी गल कीती। माझे दे पिंडां ने सब तो वध शहीद दिते। चमकौर दी गड़ी, मुक्तसर दी जंग, सरहिंद दी दीवार, ए सब माझे दी शहादती परंपरा दियां मिसालां ने। जलियांवाला बाग दा साका 1919 विच अमृतसर विच ही होया, जिथे जनरल डायर ने निहत्थे लोकां दे गोलियां चलवा दित्तियां। 1947 दी वंड समय माझे ने सब तो वध दर्द सहन कीता। लाहौर जो माझे दा दिल सी पाकिस्तान चला गया, लखां लोक उजड़े, कतलेआम होए, अमृतसर फ्यूजां दा केंद्र बन गया। अज भी वड्डे बुजुर्ग वंड दे जख्म भुले नहीं। माझे दी बोली टकसाली बोली। माझे दी बोली नूं टकसाली बोली, टकसाली पंजाबी जां स्टैंडर्ड पंजाबी मन्निया जांदा है। पंजाबी साहित, गुरबाणी, अखबारां ते स्कूली किताबां दी भाषा माझी बोली ही है।

तेरे मांग देने बाद आंदी आना लूना लाज, तेरे मांग देने बाद आंदी आना लूना लाज।

ਇਜਾਜ਼ਤ।

0: नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी के दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: दिवस सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम। अदर भाई
1: जी कुशल,
0: इसमें भी हम बातचीत सुनवाएंगे और योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा।
1: बिल्कुल, तो हम बातचीत कर रहे हैं सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं कि बकरी पालन से जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कुसुम बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाई नमस्कार। खेती के साथ साथ पशुपालन का हमेशा से रिश्ता रहा है, क्योंकि जब से खेती आपने शुरू की है और खेती बिना पशुओं के नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि अगर आपकी खेती में कभी छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो आपकी भरपाई पशुपालन से हो जाती है। तो पशुपालन को अगर हम रोजगार का जरिया बनाते हैं और उसमें विशेष तौर पे गाय भैंस को तो ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन जो भेड़ और बकरी, संख्या तो इनकी बहुत है लेकिन उतना इस पे जोर नहीं दिया गया, और अगर इसे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व स्तर पे भी किस तरीके से किया जाए जिससे कि किसान का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और जो इससे जुड़े हमारे व्यवसायी हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी लाभ मिल सके। और इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एस के सिंह जी को, जो कि परियोजना निदेशक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने जिक्र किया है कि भेड़ और बकरी पालन, और इसको हमारे किसान भाई जो एक तो मध्यम या और निचले तबके के हैं वो लोग करते हैं, लेकिन इसको अगर बड़े स्तर पे ले जाना हो और देश नहीं विश्वव्यापी स्तर पे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसे ले जाया जा सकता है?
1: अगर हमें खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देना है तो पशु उत्पादों से जो खाद्य है आदमियों के लिए उसे सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे एशिया में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहिए। अब आप अपने भारत देश की देखें
2: जी,
1: तो इसमें आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां होती है और अच्छी संख्या में भेड़े भी हैं
2: जी।
1: तो संभावनाएं तो अपार है, केवल हमें क्या करना है कि आधुनिक युग में विज्ञान का, पशुपालन तकनीकियों का समावेश करते हुए किसानों तक इतना ज्ञान पहुंचा देना है कि वो सक्षम हो सके भेड़ और बकरी का ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम लागत में उत्पादन करना। और दूसरी सबसे बड़ी की हमारा जो भौगोलिक परिवेश देश का है
2: जी,
1: जिसमें हमारा जो है जोत बहुत छोटी होती जा रही है, आप देखें कि जोत इतनी छोटी हो गई है कि ट्रैक्टर से चलना मुश्किल हो जाता है आजकल, तो पूरा यूपी बिहार बंगाल इधर देखें तो
2: जी।
1: ऐसी स्थिति में भेड़ और बकरी जिसका वजन कम है, साइज कम है, उनको पालना बहुत ही अनुकूल होगा,
2: कम क्षेत्रफल में उनको रख भी सकते
1: हैं, रख सकते हैं, उनका फार्म खोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व में अलग अलग इस महाद्वीप में और देशों में कहीं बकरी के मांस का और दूध का बहुत मांग है, कहीं भेड़ की मांग है, उसको देखते हुए हमें अपने देश में बहुत बड़े स्तर पे भेड़ और बकरी का उत्पादन करना चाहिए, किसानों को आकर्षित करना चाहिए कि वो भेड़ और बकरी न केवल देश की खपत के लिए बल्कि वैश्विक खपत के लिए उत्पादन करें।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन करना चाहिए, तो इसको अगर देश के स्तर पे बात करें तो इसका कैसे बढ़ाया जा सकता
1: है? देखिए, जब तक आप संगठित और व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे और सरकार इसको प्रमोट नहीं करेगी तब तक आएगा नहीं। मैं सरकार के प्रमोट करने की बात कर रहा हूं, तो सरकार पे बहुत ज्ञान है, बहुत तकनीकियां हैं, संस्थान है, योजनाएं हैं प्रादेशिक लेवल की और देश के स्तर की, लेकिन उनको जो

0: बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जो इस पशुपालन में आना चाहते हैं, उन तक पहुंचा करके उनमें एक उत्साह पैदा करना होगा, जिससे कि वो लगन लगा के काम करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5-6 साल अगर 10 साल हम लोग मतलब देश के स्तर पे बच्चों को, बेरोजगार लोगों को शिक्षा दें कि भेड़ बकरी पालन करके आप लाभ कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जितने भी देश में हैं, और देश के भेड़ बकरी ऐसी है कि हर क्षेत्र में पाई जाती, राजस्थान की गर्मी से लेकर के और आप देखें कि उत्तराखंड, लद्दाख लेह में भी पाई जाती है, तो हर मौसम के लिए अनुकूल है। तो हमें जो है गांव के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे किसानों को प्रोत्साहन दे करके उनका ज्ञान वर्धन करना चाहिए, उनकी क्षमता विकास, क्षमता विकास की बात हम कर रहे हैं, तो उनको कुछ इतना लोन मिल जाए, इतना संसाधन मिल जाए जिससे कि 100-200-400 बकरियां या भेड़े पाल सके। क्या होगा कि अगर आपके एक गांव में 2-4 लोग भी ऐसे आते हैं जो कि बकरियां या भेड़े पाल करके लाभ कमाने लग गए, तो अपने आप एक प्रदर्शन फॉर्म की तरह काम करेगा और गांव के लोग जो है आकर्षित होंगे, काम
1: भी करेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे।
0: जी
1: ये तो रही देश स्तर की बात। जब हम किसान की बात करते हैं, क्योंकि किसान हमेशा देखो मेहनती तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक धारणा रहती है कि जिधर थोड़ा आसान होता है उसी की तरफ वो लालायित होता है, और किसी भी कार्य करने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है कि कठिन कार्य करने की, तो वो कैसे किसान इसको करे जिससे इसमें जितना वो पारंपरिक तरीके से करता है जो उसे लाभ मिलता है वो उसका एक साधारण लाभ होता है, लेकिन जब उसे वो व्यवसाय के स्तर पर करना चाहता है तो उसका लाभ अच्छा होता है।
0: एक जो है नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक नियम है कि जीव का जितना बड़ा आकार होगा उतना सक्षम होगा
1: जी,
0: और बीमारियां कम लगेंगी, मृत्यु कम है, जितना छोटा होगा कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी मरेंगे, ज्यादा संख्या में मरते हैं, तो वो एक नैसर्गिक नियम है ये। तो अगर आप पशुपालन में देखिए तो गाय भैंस की अपेक्षा भेड़ बकरी ज्यादा थोड़ा ससेप्टेबल है, मृत्यु दर ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा लगती है। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि पे और यहाँ सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, समय पे वैक्सीन मिल जाए उनको, समय पे परजीवियों की रोकथाम के लिए, परजीवी बहुत लगते हैं, बाल है ना इनका भेड़े बाल बकरी इसमें परजीवी किलने हैं, जुए हैं, बहुत लगते हैं। तो अब मैं बताऊं कि 2 चीजों का रोकथाम कर ले हम देश में, तो आप पाएंगे 3 या 4 साल में संख्या भी दूनी होगी, उत्पादन भी दूना होगा।
1: प्रोडक्ट सब इसमें जैसे जो वैक्सीनेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके अलावा जो हमारी नस्लें हैं, क्योंकि तो बहुत सी जो हमारी पुरानी पारंपरिक नस्लें हैं तो उनमें उतना विकास नहीं हुआ है और नई नस्लें भी लाई गई हैं, तो उनको सुधार के भी कार्यक्रम चलाए जाए, अगर नई नस्लों को किसान भाई पालें तो उससे ज्यादा उन्हें फायदा हो।
0: मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा कि हमारे पास भेड़ की भी बकरियों की भी 40 से ज्यादा नस्लें हैं, नस्लों की कमी नहीं है। कमी क्या है, हमारे पास ऐसा संगठन नहीं है, ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें कि उन नस्लों के बढ़िया अच्छी अनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की पहचान की जाए। यदि हमें आपको या किसी संगठन को यदि पता है कि वो जानवर कहाँ है, जिस दिन ये ज्ञान हमें आ जाएगा उस दिन उनकी क्षमता भी हम उपयोग कर लेंगे, क्षमता अनुसार उनका उत्पादन होंगे। तो नस्ल सुधार में सबसे पहली चीज देश के स्तर पे और नस्ल के स्तर पे हमें ये कहनी चाहिए किसानों के पास एक से एक अच्छी जानवर है। बस क्या है कि हमारे पास एक ढांचागत संरचना नस्ल विकास का नहीं है, पूरे देश में नहीं है। तो किसी भी नस्ल का ढांचा या संगठन या सोसाइटी नहीं है जो उस नस्ल को देखे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें हर नस्ल का एक ऐसी सरकारी अधिकृत सोसाइटी बनानी होगी जो उस नस्ल की देखभाल करे।
1: दरअसल जैसे कि कोई भी युवा अगर अपने रोजगार के लिए भेड़ और बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें, कहां से?
0: बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि पहले तो आपको भेड़ का भी संस्थान है भारत सरकार का, बकरी का भी है, एक जयपुर के पास है, एक मथुरा में है। तो अगर शुरुआत करना चाहें तो वहां जाइए, देखिए, वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए। जहां तक नस्ल का चुनाव करना है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए पोल्ट्री में क्या है कि हैचरीज हैं, आप उनको कहिए कि भैया इस नस्ल की मुर्गी का 10,000 जो है बच्चे चूजे चाहिए, मिल जाएंगे। आप बकरी में आप 10 मांगे कोई देने को।

0: बारबरी, बीटल, जमुनापारी, झकराना, ब्लैक बंगाल जो भी है उसके आप देख लीजिए कि उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, उस अनुसार जानवर लाइए। जहां तक मैं जानता हूं दोनों संस्थान 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, तो मैं जितने भी लोग इस व्यवसाय में घुसना चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। निवेदन यह है कि आप उनकी वेबसाइट जाइए बकरी अनुसंधान संस्थान की या भेड़ अनुसंधान संस्थान की, वहां पर उनके प्रोग्राम आते हैं प्रशिक्षण के, आप 10 दिन का या जितना भी हफ्ते भर का होता है उसमें भाग लीजिए। बहुत सक्षम वैज्ञानिक आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जाएंगे तो थोड़ा सशंकित जाएंगे कि क्या मिलेगा, लेकिन जब आएंगे तो आप एक पूर्ण पशुपालक बन के आएंगे। तो किसान भाइयों, जिसको भी पालना है आप प्रशिक्षण लीजिए, और अगर संभव हो, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज फार्म नहीं है, बहुत कम है, तो कुछ दिन आप जो है जो पारंपरिक किसान है, पुश्तैनी जिनका है, जनरेशन दर जनरेशन, उनसे उनके सानिध्य में रहिए, बात करिए, सीखिए, और ज्ञान कभी जाया नहीं जाता।
1: अगर कुछ शुरू करना चाहता है तो उसका सही समय क्या हो सकता है?
0: देखिए, भेड़ और बकरियां बाल वाले जानवर हैं, साल में एक बार बच्चे देते हैं, 60% जानवर दो बार देते हैं
1: जी।
0: तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भेड़ हो या बकरी हो, जैसे ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होती है, उत्पादन वाली अवस्था को, कभी जाया नहीं जाती, वो या तो गाभिन होगी या बच्चे पिला रही होगी, कभी सूखी बेटा दो महीने के लिए होती है
1: जी।
0: तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा उत्पादन भी होती है, तो उनकी देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पहली बार, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास उसका ज्ञान हो।
1: और आजकल तो जैसे बात होती है कि मार्केटिंग के, जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने इम्पोर्ट तो लगाया है, उसमें मेहनत मजदूरी और जो भी है लेबर का सब कुछ लगा है, लेकिन उसकी भरपाई जब होगी जब आउटपुट निकलेगा
0: जी।
1: तो मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका है?
0: पहली बात यह है कि मार्केटिंग का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें
1: जी।
0: तो मार्केटिंग से पहले एक चीज है कि लागत कम से कम कर रखने की कोशिश करिए, तो आप तकनीकी ज्ञान आपके पास हो। तो मार्केटिंग की बात आती है तो ये दोनों मानसित हुए हैं। तो क्या है कि भारत देश में लगभग 6 या 7 ऐसे त्योहार हैं जिसमें कि बकरी और भेड़ के मांस की मांग, जिसे कहते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1.5 गुना, मतलब आपको 30-40% दाम बच जाता है। अच्छा जानवर है, आपको मुंह मांगा कीमत मिलेगी, लेकिन सभी जानवर उनका मूल्य है, ऐसे समय में उससे 1.5 गुना 2 गुना कीमत पे बिकते हैं बाजार में। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस योग्य, उस गुणवत्ता वाले जानवरों का उत्पादन करना पड़ेगा, जो कि लोगों को आकर्षित करे। तो एक तो ये है कि स्थानीय मांग है, दूसरी बात यह है कि मांस के प्रति प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है देश की बढ़ती जा रही, तो वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो है कि प्रतिदिन आपको, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाजार में आपके पास जानवर हो और न बिके, कुछ ऐसा ही माल नहीं बिक रहा। लेकिन भेड़ वगैरह ऐसा है कि कभी हो ही नहीं सकता कि आपके न बिके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा बड़े किसान बनना चाहते हैं, संगठित होकर के आप देश का और पूरे विश्व के मार्केट को देखे, एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, हर जगह बैठे हैं, और वो इस ताक में रहते हैं, खुश रहते हैं कि अच्छा जानवर कब कितना मिलेगा। अगर आप 2-3 ट्रक अच्छे जानवर, एक उम्र के स्वस्थ जिसमें कि रोग नहीं हो, रोगी होगा जानवर बहुत था, हड्डी हड्डी निकलेगी, मांस के लिए अच्छा नहीं माना, स्वस्थ जानवर हो, आप जो मांग मांगेंगे वो मिलेगा।
1: सर, इसके साथ साथ आज के दिन जो बकरी पालन दूध के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध की भी मांग बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत भी बाजार में
0: बहुत है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूध का, बकरी का एक, मैं जहां तक देख पाता हूं, हमारे पास जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है बीटल है, जमुनापारी है, झकराना है, बारबरी भी अच्छा दूध दे देती है, कुछ नस्लें हैं। मेरा अनुभव यह है कि केवल दूध के लिए व्यावसायिक तौर पर पालना थोड़ा सा लाभदायी नहीं होगा, आप दूध और मांस
1: दोनों के लिए
0: पालिए तो अच्छा हो जाता है। तो दूध के लिए है कि आप अगर एक दिन में 400-500 लीटर दूध उत्पादन कर लेते हैं तो फिर तो आप देश में मशहूर हो जाएंगे। बकरी का दूध जो है छोटे बच्चों में 2-3 महीने, माँ भी सर्विस पे आते हैं, पिताजी भी सर्विस आते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, पच्च माना जाता है। और लोग, मैं बताऊं, अच्छे अच्छे व्यवसाय

0: कहते हैं कि उनको जो है मांगे कीमत पे शुद्ध बकरी का दूध मिल जाए। आप वो मार्केट पकड़िए, आपको फायदा होगा। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपके पास कम से कम 200-250 लीटर बकरी का दूध आपके पास हो। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूध कलेक्शन जैसे पीसीडीएफ है, एनडीडीबी है, इस तरीके से बकरी के दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके बेचने के एक व्यवसाय वो भी हो सकता है आपका। आप बकरी में पालिए, लेकिन बकरी पालकों से दूध इकट्ठा करिए, उनको प्रोसेस करिए और सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए कि शुद्ध बकरी का हो। और आप देखिए कि आप फेमस हो जाएंगे, स्पेशली विशेषकर जब आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता के आसपास हो, मेट्रो साइड में हो, वहां पर बहुत इसकी मांग है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत विस्तार से भेड़ और बकरी पालन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई पाल करके रोजगार के तौर पे इसे देख सकते हैं और अपना ही विकास नहीं इसमें देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। डॉक्टर एस के सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बकरी पालन छोटे किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय। डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक आईसीएआर नई दिल्ली से शिव नंदन लाल की बातचीत।
3: देखिए बात बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे सभी किसान भाइयों को कि देखिए बकरी के पालन में और पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन के साथ साथ जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो दोहरा लाभ भी लेते हैं। और दोहरा लाभ जब मिलता है जब हमारी मिट्टी अच्छा उत्पादन देती है।
2: बिल्कुल, और जो योजनाएं बताई गई हैं किसान भाई बहनों के लिए उसका लाभ लेते हैं। मुझे पता है तो भाई आप बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये एक योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसमें किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वैज्ञानिक जांच के आधार पर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। तो भाई जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।
3: बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है कुसुम बहन, जब हमारे किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं या अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं तो जांच कराने में उन्हें यह मालूम हो जाता है कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो क्या होता है कि जब ये जांच के लिए उनकी मिट्टी लैब के अंदर जाती है तो जब वहां जांच होती है तो उसमें पता पड़ जाता है हमारे किसान भाई को कि मेरे जमीन के अंदर पोटाश की कमी हो गई या सल्फर की कमी हो गई या और किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है। तो उसी की मात्रा जो है हमारे किसान भाई फिर अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो बढ़ता है।
2: बिल्कुल अतुल भाई, जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश इन सबकी जरूरत होती है और इसके अलावा अम्लीय क्षारीयता भी जो होती है उनमें एक अनुपात में होता है इन सब चीजों का। और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन है या नहीं है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरन, इतनी सारी जो 12 प्रमुख मानकों की जांच रिपोर्ट एक तैयार होती है।
3: बहुत छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं।
2: बिल्कुल, और ये हम अपने आप अंदाजा नहीं लगा सकते
3: हैं, अंदाजा कहां, जांच के द्वारा ही हमें पता पड़ती है हमारे किसान भाइयों को सबको, हमें भी। और देखिए हम तो यही कहेंगे कि अपने खेत की मिट्टी जब आप जांच कराएं कोशिश करें कुसुम बहन की भाई कम से कम जब आपका खेत पर जाए तो कम से कम 8 से 10 घंटे आप अपने खेत के अंदर करें, कम से कम 6 से 7-8 इंच तक घेरे करें कम से कम, और अलग अलग गड्ढों की मिट्टी आप इकट्ठा करें और तब उसको इकट्ठे करके और उसको मिला करके तब एक सैंपल आप लेकर के अपने लैब के अंदर जाएं और अपनी मिट्टी की जो है आप अच्छी तरह से जांच कराएं।
2: बिल्कुल अतुल भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करती है। योजना स्वस्थ धरा, खेत हरा के लक्ष्य के साकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा को मजबूत भी बना रही है।
3: बिल्कुल, और देखिए एक जानकारी और देना चाहते हैं भाई, कल हमारे सभी किसान भाई फल, सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे। और कल देखिए बातचीत के माध्यम से चारा फसलों जैसे चरी, बाजरा, ग्वार की बुवाई और मानसून में हरे चारे का भंडारण किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं इसकी जानकारी कल डॉक्टर समरपाल सिंह देंगे हमारे सभी किसान बहन भाइयों को। तो कल भाई आप अपना कार्यक्रम हमारा किसी जगह जरूर सुने और आप चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश।

0: राम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। गजलों और कव्वालियों के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में यह गजल।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में फिल्म मुगले आजम की एक अव्वाली अभी आप सुन रहे थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जगजीत सिंह की इस कव्वाली की तरफ।

0: इसी गीत के साथ मफिर कुर्बानी का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्त स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि ये समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
1: दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं करता।
0: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्त स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली की बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्त निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
1: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रही और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने सीएजी ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई। हमने बहुत मजबूती से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द सीएजी का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
0: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज एरिठाला, आरकेपुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकती हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर 50,000 रूपये, ई ऑटो पर 75,000 रूपये और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर 1,50,000 रूपये की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वाहन के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले

0: नागरिक इस सूची की जांच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
1: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है, और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं। और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी, हम जहां पेड़ लगाना चाहते हैं वहां पेड़ लगा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
1: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहां भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूं कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिल-ए-तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा शक्ति है इसको आगे ला करके, उनकी वेवलेंथ पे आकर के, उनके माइंडसेट को पढ़ के, उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्यूलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी की उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके वो करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से बूझते हुए दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होगी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा करने की जो बात थी उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन

0: बरामद किए गए।
1: पुलिस ने स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड जल भर्ती नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से तीन अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेज, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से दो स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइफ कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की साझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
2: गुरुद्वारा साहब की जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और करते करते आज वो गुरुद्वारों पर भी हमले कर रहे हैं जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
0: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
3: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहां की माइनोरिटीज सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स है और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेंपल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स है उनको सुरक्षित रखना वहां की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
0: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत के कुछ सदाबहार और दिल को छू लेने वाले नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मालिका में मैं विजेता चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

मौसम चार पांच बंगालों

चार मौसम चार पांचवा

दोस्तों कहते हैं संगीत सीधा दिल तक पहुंचता है और हमें उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा, जिसे गाया मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम सिंदूर।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को भी आपने सुना। क्या खूबसूरत गीत था। ऐसे गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई ताजगी का एहसास कराते हैं। क्या आपको भी ये नई ताजगी का एहसास हुआ या नहीं?

दोस्तों, फिल्मी गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। कोई गीत हमें बचपन की याद दिलाता है तो कोई किसी खास इंसान की।

अगर आपका भी किसी गीत को सुनकर हंसी पर एक मुस्कान आ जाती है तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया। अगर आप किसी पुरानी याद में खो जाते हैं तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया।

है फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीत की ये खासियत है कि बिना किसी भाषा या सीमा के वो सीधे दिल में उतर जाता है। एक अच्छा गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और पुरानी यादों को ताजा भी कर सकता है।

केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि तनाव को कम करने का, मन को शांत करने का और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने का भी काम करता है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, एक अच्छा गीत हमेशा मन को सुकून देता है।

शायद महसूस किया होगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितनी बार भी सुन लें, मन कभी नहीं भरता। उनके धुन, उनके बोल और उनसे जुड़ी हमारी जो यादें होती हैं, वो हमेशा ही ताजा रहती हैं।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आप मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने पसंदीदा फिल्म गीत।

0: जाने के साथ गीत मालिका का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरा वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। वैश्विक एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज

0: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी के दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत के सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवेदन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्चस्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नौमान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दौरे शहरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट। यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर

0: सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल है। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नमन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली एवं जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान के जोई फू को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said,

समाज फरमाइए चंदन दास की गाई गजली। बहुत जबरी खबरें निश्चित की जाएंगी और 9:55 पर कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। 5:10 पेश करेंगे प्रोग्राम हरफे सुखन। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं 10:30 से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़ी सगीर से और 11:30 प्रोग्राम होगा सुर्खियों में। 12:00 बुजमी मौसीकी प्रोग्राम में सुनिएगा बीना पानी मिश्रा से राग अलीजा बलावल में ख्याल। 12:00 आलमी खबरें की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी प्रोग्राम में सुनिएगा धुलबेदी से सितार पर राग तोड़ी। सदराहत फिल्मी नगमों का लुत्फ आप ले सकती हैं आखिर एशिया प्रोग्राम में 12:30। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

रेडियो में 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशे खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए चंदन दास की गायी हाजिरी। आगाज कर रहे हैं प्याम सईदी की इस गजल के साथ।

सावन भी आप समाप्त फरमा रहे थे इब्राहिम अश का कलाम, एक मुजाफिल गजल चला है चंदन दास, कलाम हसन कमाल का है।

आकाशवाणी है। अब आप म्यांमार से खबर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान के अपने हमनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समंदरी नकल हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मग़रिब एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरक इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को इससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ़ुज़, मसनूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के दरमियान तवानाई का तहफ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 सर्वा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि

पैदावारी और सार्फिन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तजारत करने, तवानाई के जामे जखीरों का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़ीरे आज़म ने हरियाणा के शहर खरखोड़ा में मारुति सुजुकी गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अदविया और मसनूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हमनसब सराई तकाईची के साथ सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये छोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का अहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज के दौर में एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकत दारी वक्त की कसौटी पर खड़ी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल है और एक आजाद और खुला भारत बहरकाहल खिता दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीकेकार और समंदरी तवानाई की नकलो हरकत के अखदारी सिलसिले से मुतालिक ताउन को और गहरा करने से इतफाक किया। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी, तजारती और तवानाई की पायदारी से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबेन तवानाई की पायदारी को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकत दारी में सरमाकारी कलीदी अंसर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनक़िदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुज़ाकरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी की क़यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बुहान के दौरान सूरत हाल से निपटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखा, नीजिन पर आयल महसूलात को कम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बेलखवामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIL के इशराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राबता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शनाख्त करना और बैन अक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से पाक और बगैर जिस्मानी राबते के सेहत से मुतालिक खुद एलानिया निजाम मुतारफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद एलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी।

0: रहती है, बिकॉज दिस इज अ कंटेजनस, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना रहती है,
1: ज्यादा होती है।
0: जी जी, तो ऐसे नहीं, सबसे बुनियादी तौर पर जो एहतियात फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए वो क्या है, अगर आप कोई कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हैं तो आप अपना तौलिया किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, और इसके अलावा आई कांटेक्ट, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप आंखों में सनग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे कि आई कांटेक्ट से भी दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, तौलिए से, हाथ मिलाने से, ये सब कॉमन है। अगर आप इन सब से ग्रसित हैं तो बेहतर है कि अगर बच्चा है तो स्कूल उसको ना भेजें, क्योंकि अन्य बच्चों के भी होने को संभावना रहती है। अगर आप कॉलेज या कोई नौकरी करने जाते हैं तो अगर एक दो दिन की आप छुट्टी ले लें तो बेहतर है, क्योंकि आपके अपने जो कलीग है उनसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।
1: अच्छा, ये आई फ्लू क्या होता है?
0: इसी का जिसको हम कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आई फ्लू के नाम से जाना जाता है।
1: जी, ज्यादातर देखा गया कि आंखें बहुत लाल हो जाती है।
0: जी जी जी,
1: चुभन होने लगती
0: है, आंखों में से डिस्चार्ज आता है, भारीपन, और आंखों में से कुछ महसूस होता है, भारीपन वगैरह का महसूस होता है इन चीजों।
1: जी जी। अच्छा, एक चीज और भी होती है, कभी कभी कहते हैं कि चुभन आंखों में होने लगती है अचानक, जैसे रोए किसी जमाने में कहा करते थे, उसे आमतौर पर कभी देख
0: आजकल के केस बहुत कम हो गए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं रोहे पुराने जमाने में वो करती थी, इसको हम उस बीमारी को हम ट्रकोमा के मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकोमा के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद आंखों में रोहे वगैरह, आंखों में लालीपन होता था, पर गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम की वजह से, जिससे कहते हैं ट्रकोमा एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया हुआ प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे जो कि 5 साल से कम है, उनको हम टॉपिकल एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन 1% दी जाती है, जिससे वो इनसे बचाव हो जाता है ट्रकोमा का, और आजकल के इनका इंसिडेंस बहुत ही कम हो गया पहले के मुकाबले।
1: अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी इस मौसम में हो सकती है? जैसे बरसात का मौसम है, क्योंकि आमतौर पर हाथ कमने लग गए, कुछ जरासीमों का मौसम होता है, इसके पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
0: जी जी, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कंजक्टिवाइटिस के बारे में, डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल के अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कॉमन है, इसके अलावा फंगल कंजक्टिवाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन है जो कि बारिश के सीजन में आपके होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर हम जैसे कि डिस्कस करें कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, जिसमें आप हर उम्र में, कोई भी उम्र हो, हर कोई आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका मोबाइल यूज करता है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की इंसिडेंस भी बढ़ गया है। इसमें यह है कि कोई अगर व्यक्ति लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करता है तो उसकी वजह से वो महसूस करता है कि उसकी आंखों में भारीपन, पानी आना, ये सब समस्या बताती है। जी जी, उसमें हम मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कंप्यूटर या कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको उचित दूरी पर रखें, एटलीस्ट आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे उनसे बनाकर रखें, और आपका जो कमरे का इल्यूमिनेशन हो, प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो, ये सब चीज छोटी मोटी बातों को आप ध्यान में रख करके आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी आंखों की आम बीमारियां, इन्फेक्शन और वजूहत और बचाव और इलाज के हवाले से। यकीनन हमारे सामईन के लिए बड़ी मुफीद रही होंगी आज की ये जानकारी। आप सुन रहे थे कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत प्रोग्राम हरफ सुखन
2: सुनने वालों की खिदमत में नजमा रहमानी का आदाब। जिंदगी दिल पे अजब सहर सा करती जाए है, एक जगह ठहरी लगे और गुजरती जाए है। सहर जिंदगी भी अजीब शय है, लाख बेवफा हो जाए मगर इंसान इसकी चाहत में दीवाना ही रहता है। कोई नहीं जानता कि गुजरे हुए लम्हात में कौन सा लम्हा जिंदगी के आखिरी लम्हे में बदल जाए। इसलिए तो कुछ लोग हर पल को आखिरी पल समझकर उसका भरपूर लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं, और कुछ उस आखिरी वक्त के खौफ से लर्जीदा सामने की नेमतों को भी ठुकराते चले जाते हैं। बहरहाल, इस सच्चाई से मफर मुमकिन नहीं कि जो आया है उसे जाना ही है। कहां से आया है, कहां जाना है, ये कोई नहीं जानता। अगर हम और आप जानते हैं तो सिर्फ लम्हा हाल। इसलिए जनाब, जीने का सलीका जरूरी है, वो जो सामने है उस पल की खुशी को गले लगा लेने में ही जिंदगी के असल मानी पोशीदा है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसे तकलीफ ना हो? लेकिन गमों का ये मतलब भी तो नहीं कि नसीमे बहारी को भी बारिश समूह समझ लिया जाए। जनाब, बात

ईश्वर में ही बात समझने की है कि हमें राख में हीरा तलाश करना है। जिसने ये समझ लिया उसने जिंदगी के मानी समझ लिए। ये जिंदगी सिर्फ अनासिर में जोहरे तरतीब का नाम नहीं, उसकी तकमील का नाम भी है, जिसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है। दिल में अगर उम्मीद का चिराग रोशन हो तो खुद ब खुद जिंदगी से मोहब्बत हो जाती है। वो हसरत ने कहा है ना, है इंतहाए यास भी एक इब्तिदाए शौक, फिर आ गए वहीं पे चले थे जहां से हम। मौत बरहक है तो जिंदगी भी आज की सच्चाई है। फिर तमाम उम्र मौत का इंतजार करने से बेहतर ये नहीं कि मौजूदा लम्हे को उस मकसद की तकदीर में सर्फ किया जाए जिसके लिए इंसान को जमीन पर भेजा गया। अगर हाँ तो सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं तो बकौल गालिब, था जिंदगी में भी मौत का धक्का लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। इसीलिए गर्दिशे फलक की शिकायत बरतरफ कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। मौत को याद रखना जरूरी तो है मगर जिंदगी की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। इस मौजू पर बहस की गुंजाइश है लेकिन फिलहाल ये गजल जो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं इसका मिजाज हमारी बातों से कुछ मुख्तलिफ है। तो पेश खिदमत है कलाम इंशा बशीर अहमद की आवाज में। गजल का मतलब है, कमर बांधे हुए चलने पे यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं।

इंसान की हस्ती को खाक कर देती है। सोचे वहां पर किसी चारा साज किसी गमगुसार की तसल्ली से ठंडा नहीं होता। सितम वाला सितम ये कि जिसकी मोहब्बत की तपिश जिस मजाक को खाक किए देती है वही उससे बेनियाज है। समय प्रोग्राम की आखिरी गजल सुमन देवगन की आवाज में, कलाम है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हमें से कि बस पाक हो गए।

प्रसंग ये जब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में धर्मपुत्र फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिल उद्यानी, मौसीकार इंद्रता। सुनना चाहते हैं गोकुल चौक गंगजला शहर से बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और बुल्की वाली फलना झा। मानेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और अंकिता भटकर। भट्टापाड़ा से बचकामाल डॉक्टर बसंत बुर्गु और मोतीलाल यादव। हिंदी कॉलोनी खंडवा से दुर्गाफा डावर, अब्दुलक डावर और जियाउलक डावर। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल। और जनाब संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले। श्रीराम बुल्डाना महाराष्ट्र से संतोष काले, तेजस काले और लोकेश एस काले। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नियत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी। और ये हैं जनाब खत्री साहब, इतनी जल्दी दोबारा आपने फिर मेल भेज दिया, अभी तो रामी लिखे आपका मेल सादिक खत्री साहब। बनपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाविया कुमारी। गणेशपुर गेंडुनवाड़ा एटा उत्तर प्रदेश से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान। नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशत अक्रम और रूबीना वसीम। और जनाब ये हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत।

और सावन लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरू का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म है धरती कहे पुकार के। सुनना चाहते हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव, ग्राम पंचायत बठेना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा, राजस्थान से सुरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह, मधु कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, कांटा रोड वाशी महाराज से मास्टर विठल सरोशी, सुषमा सरोशी और मायरा सरोशी, नगर दरेपुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और अशोक येले, पश्चिम तो गंजुनवाड़ा से मनोहर लल्ला, नसीम मिर्जा और अरबाज शाहबाज, सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शराबी रामटेके, रेलवे रोड गंजुनवाड़ा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बीबी फातिमा गाजी, कर्नाटक स्ट्रीट से कर्नाटक स्टेट चिन्ह तीनपति से अच्छा प्रकाश श्यामला अश्वनी और मोहित रमेश, जिला काजीन उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका, गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिन हसन और नाजिया इब्राहिम, जमानगर खंडवा से अल्तमाश समीना और मुदस्सर, और लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।

हमारे साथ प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में एसएच बिहारी का गीत जिसे मौसीकी सजाया ओपी नैयर ने, फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी। सुनना चाहते हैं गांव डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह। गांव नायवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वैद मिधा और अलका मिधा। बाघा रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा और शबिस्ता मोहम्मद। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबी शेख, शेख रहीमुन्ना। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले और जूही सदा फूलवाले। लखनऊ में जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, इमरान अहमद और उनके अहले खाना। प्रेमनगर दुर्ग से किशोर कुमार साहू और अनुसुईया साहू। और ये जनाब जरूर वरूड से बाबा साहेब बड़ोदे, आदि चरपे और चंद प्रभा बड़ोदे। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज हुसैन सिद्दीकी। और ये जनाब ये कहां से हैं जनाब ये? अच्छा, फरुखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया। साईनगर आरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शनी मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराज से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना गोंडानी और पढ़ने प्रसिद्धि। काशीनिवास नागपुर से हर्षल रंबाडे, वैष्णवी रंबाडे और जानवी रंबाडे। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंबाडे और भारती रंबाडे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। कामथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जैसी, सीता और गीता। बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युवती देवदास।

उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तजारत करने, तवानाई के जामे जखीरों का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोड़ा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौते का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाए ताकाची के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का अहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हममनसब सनाए ताकाची ने आज नई दिल्ली में बातचीत की और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात के मजबूत बुनियादों पर तबादला ख्याल किया। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात को तस्लीम किया कि भारत और जापान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर कायम है और आज की बातचीत में ये एतमाद वाज तौर पर नजर आया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत से तवानाई की यकीन फराहमी, इक्तिसादी सलामती, जदीद टेक्नोलॉजी और एख्तरा समेत कई शोबों में मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीकाकार और समंदरी तवानाई की नकलो हरकत के अखदारी सिलसिले से मुतालिक ताउन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाए ताकाची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादला ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनत की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबैन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज उन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। ताइवान की वजारत दिफा ने आज अपने अतराफ चीनी फजाइया के 22 जंगी तैयारों की मौजूदगी का पता लगाया। इनमें से 20 तैयारे आबनाए ताइवान की दरमियानी लकीर उबूर करते हुए ताइवान के शुमाली वस्ती और जुनूब मगरबी एयर डिफेंस एडिटेशन आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में दाखिल हुए। इससे कबल दिन में ताइवान ने अपनी आबी हदूद में 5 चीनी फौजी तैयारों, 6 बहरी जहाजों और 5 सरकारी कश्तियों की मौजूदगी का पता लगाया था। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जिनमें 17 शहरी हलाक हो गए हैं और 90 से ज्यादा जख्मी हैं। इन हमलों के नतीजे में कीव के 30 मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुंचा जिनमें रिहायशी इमारतें और शहरी बुनियादी ढांचे शामिल हैं। एक बयान में रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से रूस के शहरी बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले तवील फासले के हमलों के जवाब में किए गए थे।

0: बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीटा ईरान के आला रूहानी रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनई की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए कल ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा कि आखिरी रसूमात में ये आला सतही नुमाइंदगी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के राबते समेत तहजीबी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करती है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक्तिसादी मसरूफियात की शानदार बुनियाद फराहम करते हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राबता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मुअस्सर बनाना है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दिगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होगी। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समंदरी नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है और मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत तामिल इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमें।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप सुन रहे थे फरियाद फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था स्नेहल भटकर ने। सुनना चाहते थे छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। विधायक छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। कोटवा नारायणपुर पापा पट्टी बल्ले से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। और यंग जनाब धनोड़ी तीलेवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बीबी आलिया। सांगली जिला जस शहर से अल्ताफ उजरे, सैफुल और सबाहत उजरे। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद। और यंग जनाब बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी। मिनोर तिलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। पुराम निजामबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी। बजलापुर मुंबई से परिणीता सिद्धांत गवानकर और टुकटुक गवाहनकर। मेहनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाहनकर, सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान। अमीर खुसरो रोड गंडुनवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम। जिला नांदेड़ एताला महाराज से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल। और ये जनाब सिमगा छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, माया यादव और कोमल यादव। और चिमिया कुरासिया कांडी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में एहसन त्रिपाठी की मौसीकी से जाए नगमा, फिल्म है लाल किला। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। एक मेल है मसरूर हसन साहब के, उन्होंने कहां से लिखा ये समझ में नहीं आया, खाली उन्होंने अपना नाम लिखकर भेज दिया है। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और निवान शर्मा जी का मेल हमें मिला है। और ये जनाब अनारकली बाजार जगलों से सुनील पाठक, कमल पाठक और बीबी गबिया। और हिंगोली महाराज से शाजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और उत्तम जामधाड़े। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री। नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा जिला सोलापुर महाराज से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और यही जनाब सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, स्वपन पायड़े और आशीष मोरकर। और जनाब ये हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत और राशि रक्षित। पाल मंदिर लकड़बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

और सामने जब सुनी आशा भोसले की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है घर की लाज, मौसीकार है रवि। सुनना चाहते हैं मारहरा गेट एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और सुहेल नवीद अब्बासी। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराज से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर। बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से अजय कुमार गुप्ता, रेखा देवी शाह और बेबी अनाविका। और जनाब ये हैं शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सायराज विशाल सपकाल। मथुरा उत्तर प्रदेश से लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और सबा अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लालबाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमाराज। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और रॉबिन राणा। और हिंगोली महाराज से, अच्छा ले चुका हूं इनका नाम, नागपुर महाराज से विठल यादव, अनुसुईया यादव और पवन राजेश यादव। राजगांव कैंप अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर। इशरत खान, सायरा बेगम और शाहबाज खान कहां से हैं जनाब, ग्राम गंगोला दातागंज जिला बदायूं से। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। और यही जनाब मुख्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। माहिरा बकनीखुर जिला झालावाड़ राजस्थान से राजेश कुमार। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जौंदले और आरती जौंदले। और जनाब ये हैं यवतमाल महाराज से अनिल, उषा बुरांडे और अनुश्री धनश्री बुरांडे। और अगला मेल है, अच्छा ले चुके हैं, पुरानी बागपत से इलियास कुरैशी, मुस्कान कुरैशी और रानी कुरैशी। कोल सिटी बरका खाने से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना और सोनू तस्रीम। बल्लारशाह से प्राची, सूरज लोंडे और अकलव्य लोंडे। और जनाब ये हैं अजय कुमार गुप्ता कोलकाता से। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर निशेता साहनी। बरकाकाना से नाजीम तबस्सुम, अब्दुल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तखार इब्राहिम। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी, अस्पनाज अंसारी और सुल्तान अंसारी।

0: इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाई जी की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अंबेसडर पायल, जैसे भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज एआई की फील्ड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें,
1: जी
0: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
0: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है, और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले,
1: जी
0: ये बहुत ही आवश्यक है, और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
0: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों
1: बिल्कुल
0: देश गल्फ कंट्रीज से काफी

0: भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते
1: जी
0: हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
2: You've got me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज्वाइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसके ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, और उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय अब दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बायोगैस और जिस तरह भी, चाहे वो तेल हो और रिफाइंड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा, और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस
1: जी,
0: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दोगुना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
0: जी बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन
1: जी
0: जापान भारत

0: में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में, और आज करीब 120 एमओयू साइन हुए हैं जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद 12 बिलियन डॉलर के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का इंजन होना चाहिए
1: जी,
0: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात आजकल कोई भी इकोनॉमी कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती है, वो सब देशों से कहीं से आयात होता है कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का, और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में
4: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बज़्म मौसीकी के प्रोग्राम में सामने आ सुनी बीना पानी मिश्रा से राग अलैया बिलावल में ख्याल।

आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरांदोजी पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समंदरी तवानाई की नकलो हरकत के अखदारी सिलसिले से मुतालिक ताउन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाए ताकाची के दरमियान कल तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनत की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबैन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज उन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कल मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राबता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मुअस्सर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारफ कराया गया है। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीटा ईरान के आला रूहानी रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा कि आखिरी रसूमात में ये आला सतही नुमाइंदगी दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के राबते समेत तहजीबी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक्तिसादी मसरूफियात की शानदार बुनियाद फराहम करते हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने कल अपने अतराफ चीनी फजाइया के 22 जंगी तैयारों की मौजूदगी का पता लगाया है। उनमें से 20 तैयारे आबनाए ताइवान की दरमियानी लकीर उबूर करते हुए ताइवान के शुमाली वस्ती और जुनूब मगरबी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में दाखिल हुए। इससे कबल दिन में ताइवान ने अपनी आबी हदूद में 5 चीनी फौजी तैयारों, 6 बहरी जहाजों और 5 सरकारी कश्तियों की मौजूदगी का पता लगाया था। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें 17 शहरी हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। इन हमलों के नतीजे में कीव के 30 मुख्तलिफ मुकामात पर नुकसान पहुंचा है, जिनमें रिहायशी इमारतें और शहरी बुनियादी ढांचे शामिल हैं। एक बयान में रूस

0: की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से रूस के शहरी बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले तवील फासले के हमलों के जवाब में किए गए। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 40 दिन के दौरान रूस पर बड़े पैमाने पर किए गए हमलों में ताजा ज्यादातर तेल साफ करने वाले कारखानों को निशाना बनाया गया, जिससे यूक्रेन और रूस के दरमियान 4 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग के दौरान रूस में ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दिगर मैच में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना होगा। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल के 2 के मुकाबले से हारते हुए हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समंदरी नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मीट्रिक टन तक तौसी देगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वस्ती इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अगर आप सुन रहे हैं मीडियम में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी ब्रिटिश पर। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सामीना सुनिए ध्रुव वेदी से सितार पर बजाया राग तोड़ी।

अनिल भाई कर्नाटकी की आवाज में आप सुन रहे थे देव कन्या फिल्म का ये नगमा। प्रोग्राम की अगली पेशकश सुमन कल्याणपुर को सुनिए, शमा फिल्म का नगमा। कलाम कैफी आजमी का है, मौसीकार गुलाम मोहम्मद।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समंदरी नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मीट्रिक टन तक तौसी देगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में वेकदारी 70 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सगुन शब का एक बजे चाहता है हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी के 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए ए-सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि एक आदमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: his address, highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Sikkim, a delegation of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs visited Nathula Pass yesterday as part of a two-day official visit to the state. Upon arriving at Nathula Pass, the delegation was accorded a warm welcome by General Officer Commanding Black Cat Division, Major General Ashish Negi. The delegation interacted with Army officers and received a comprehensive briefing on border management and national security. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nunwan in the Pehelgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है. साथियों, समय हुआ है 1:10 और ये समय होता है कार्यक्रम गीत सुनहरे का. जी हाँ, गोल्डन एरा फिल्म म्यूजिक. साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार. साथियों, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत के साथ. जी हाँ, ये ठंडी हवाएं एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार गीत है. शुरुआत कर रहे हैं इसी गीत के साथ, जो ठंडी हवाएं. ठंडी हवाएं फिल्म बेटी से बहुत ही शानदार रचना है. जो सिंगर्स हैं हमारे, खुर्शीद, बसंती, अरुण कुमार. जी हां, अरुण कुमार. ये फिल्म बेटी 1941 प्रदर्शित फिल्म रही है और इस गीत को गीत डीएन मधोके हैं और संगीत से सजाया है जानन दत्त ने. तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली खूबसूरत रचना.

जी हाँ साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत है और ये काहे करता देर बना दी। जी हाँ, ये फिल्म का नाम हम बता देते हैं, ये किस फिल्म का गीत है? तो ये गीत है औरत। जी हाँ, औरत फिल्म से गीत है और सिंगर है जो गायक है अनिल विश्वास है। ये फिल्म औरत 1940 प्रदर्शन फिल्म रही है और संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने ही। तो सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪਰਾਤੀ।

वेद पराती काह करता दे काह करता दे काहे काहे करता दे।

करता तीन बना।

बड़ी है गगनयान। हो जाए ना अबेर बराती, हो जाए ना अबेर बराती, काह करता गे काह करता गे काह करता गे काह करता बेर बराती।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है जिसमें गोल्डन एरा यानी कि बिल्कुल खरे सोने की तरह एक से एक बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है। एक ऐसे अनमोल खूबसूरत गीत संगीत के खजाने से लेकर आते हैं हमारे साथी। जिस प्रकार से हम लेकर आते हैं, ऐसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं ऐसे गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि गीत संगीत का आनंद लेना हो तो सच में जो सुनहरे दौर की जो एक अलग पहचान होती है, आज भी जो सीनियर श्रोता साथी हैं उन्हें गानों को ही सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कुछ बात ही अलग है, है ना? ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत आ रहा है जो ऑल टाइम फेवरेट गीत है। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है। ये गीत दिल के उमंगे है फिल्म मोमिन जी से हेमंत कुमार और गीता दत्त और ठाकुर की आवाज में शानदार रचना है। ये फिल्म मोमिन जी 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है। इस गीत को सजाया है संगीत से AJ बर्मन साहब ने। सुनते हैं ये शानदार रचना।

जवान गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर दिल की उमंगे हैं जवां। वाकई बिल्कुल अलग मजाकिया काइंड ऑफ सॉन्ग, बहुत ही अलग एक्टिंग, लाजवाब खूबसूरत रचना। एक और गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनवाते हैं ये शानदार रचना। इस रचना के बारे में कुछ जानकारी हम बता देते हैं। के पहला पहला प्यार सीआईडी फिल्म से है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में शानदार रचना है। ये फिल्म 1956 प्रदर्शन फिल्म रही है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं शानदार खूबसूरत गीत।

ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत लेके पहला पहला प्यार ऑल टाइम फेवरेट लाजवाब खूबसूरत गीत भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। दोस्तों वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। मैंने चांद और फिल्म चंद्रकांता से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। ये फिल्म चंद्रकांता 1956 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत सिप्पी फिल्म्स द्वारा है और गीत संगीत से सजाया है एन दत्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

शुक्रिया साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये राती मेरी पुरानी, वाकई बहुत ही प्यारा गीत, लाजवाब रचना। साथियों समय 2 बजने को है, केवल 2 या 3 मिनट बाकी है, तो इसी दौरान एक गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना सुनवा रहे हैं। तो ये सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रचना, भीगी हुई इस रात का जहां नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म ही वो 1966 प्रदर्शन फिल्म रही। गीत मूवी मोनुमेंट के हैं और मोनुमेंट के हैं और संगीत से सजाए हैं मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना, आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिसार जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी बुकदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि बुकदहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे।

0: parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain over the next 24 hours. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है. साथियों, समय हुआ है 2:10 तो साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत. जी, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप, जहां बिना किसी रुकावट के आप सुन पाएंगे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी रुकावट के, बस आप लगातार बारंबार खूबसूरत गीतों की रचना आपके साथ. मैं जी हाँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आज है ललित कुमार. तो हो जाइए तैयार, बिना सोचे बिना समझे बस गीत संगीत का आनंद लेते रहें मेरे साथ. तो आइए शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ.

मौका फिर कहाँ मिलेगा।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों का जो समावेश मिल रहा है, एक से एक लाजवाब खूबसूरत गीत। एक गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत रचना है, और ये रचना वाकई बहुत ही सुंदर है, बेमिसाल है, खूबसूरत है। जी दोस्तों, गीत वाकई अपने आप में बेहद खूबसूरत है। बीती ना बिताई रहना बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है। आई सुनते हैं शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बीते न बिताए रहना, फिल्म परिचय से, जो 1972 प्रदर्शित फिल्म रही। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में शानदार रचना, गीत गुलजार के और संगीत राहुल देव बर्मन का था। सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत अनमोल रचना। जी हाँ, रात का समय है, 3:10 बाकी है। हमें आपके साथ अभी भी, जी दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त ललित कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, आकाशवाणी में एक ही स्टूडियो में दो फ्रीक्वेंसी चल रही है। एक है इंद्रप्रस्थ चैनल जिसमें आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दूसरा AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप दोनों ही फ्रीक्वेंसी में कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अभी जो गीत आपने सुना, इस रात के सन्नाटे में बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा और बहुत ही प्यारा फिल्म दो चेहरे से आयशा भोसले की आवाज में सुंदर गीत। फिल्म दो चेहरे 1975 रिलीज हो रही है और गीत रतन प्रोडक्शन द्वारा है और गीत संगीत को सजाया है सोनिक उम्मी ने। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। दीप जले आना, जब दीप जब शाम डले जाना, बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है। तो हम सुनवाते हैं ये शानदार रचना। साथियों, जब दीप जले आना फिल्म चितचोर से है, यशुदास और हेमलता की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना है। फिल्म चितचोर 1976 प्रदर्शन फिल्म रही है। गीत राजश्री प्रोडक्शन द्वारा है और संगीत से सजा है रविन्द्र जैन ने। तो ऐसे सुनते हैं शानदार खूबसूरत रचना।

गया साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश आप सभी साथियों ने मिलकर बांधा है। वाकई हमें भी अच्छा लग रहा है और वाकई रात का समय बिल्कुल अलग ही होता है। बिल्कुल एकांत में सुंदर बेहतरीन रचनाओं को सुनने का आनंद एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, न जाने कितने गुना बढ़ जाता है। वाकई बहुत ही शानदार साथियों। और इतने सारे गीतों के साथ साथ समय के 3 घंटे हो चुके हैं हमें और बस 5 मिनट ही बाकी है, बल्कि 4 मिनट बाकी है और एक गीत सुनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि क्योंकि आजकल बहुत सारे शादियों का माहौल भी चल रहा है और ऐसे में बर्थडे भी किसी का मनाया जा रहा है, ऐसे में वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो हम सभी के लिए एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। जो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार है। तो अर्चना जोशी और अनिल जोशी, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो इसलिए तो उनके लिए एक गीत समर्पित कर रहे हैं हम, यानी कि मैं आपका दोस्त ललित कुमार। और सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी साथी खुश होंगे और मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत बाहर की अंतिम रचना। सुनते

0: साथियों, इसी गीत के साथ गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समय हुआ है 3:10 बजने वाले हैं और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खड़खोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल की एक लड़की ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़बाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़बाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत और गजलों का। अभी आपने सुनी राधिका चोपड़ा की आवाज में है बेहतरीन सी हम ये सुनते हैं अगली पेशकश चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम और इसमें अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में यह खूबसूरत सा गीत। धीरू उषा की आवाज में

0: ये आकाशवाणी का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजने को है। ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: श्रोताशाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरेश्वर सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का।

Gamma,

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर, अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। सुबह 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

मैं अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देती हूं। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगी आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन के बारे में। पांच बजकर बीस मिनट पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। पांच बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रातः 6:10 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। प्रातः 6:45 पर श्री रामचरित मानस से पाठ। आज इसमें आप सुनेंगे बालकांड का भाग 105। पहले 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका। 7:30 का वक्त रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम का। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर गांधी चर्चा। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:30। फिल्म संगीत आपकी पसंद यहाँ एक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 10:10 पर। सदस्य का वक्त रहेगा 11:10 और सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रातः 11:30 पर। थी आज प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:00 को है। अब समाचार होंगे।

हरे आम सिक्के के सासवासन बाही तना दी कमाई दान ते आन तार के काल साजी।

सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रे आयत।

दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शां सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: कलयुग रथ अगन का कूड़ गर्थ वह मला पला।
1: श्याम कहे स्तंभर स्वामी सच में आचे सच रहे सब तो सच समान रिग कहे रखे अतपुर राम नाम देवा में सुन नायला प्रच जाए नाम ताम पंत्र पाए जज में जो चली चंद्रावल कांत चुन जादम भया

लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजीना तक पाव कत्ती है बमन बटे आ कौन बकरा लड़का है सब।

0: न टुटई जतक होवे जो महला पहला।
1: नाय मने पत उपजे सलाही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग न टूट सकूत महला पहला।
0: तग न इंद्री तग न नारी पलके तुक मिनत दाड़ी तग न पैरी तग न नत्ती तग न जेवा तग न की।

মানে অন্তরা সুদার পরিচয় বদে আসাই শিশু সংসার হুকম হুকম।